रावण का वध करने में सफल हो सके। इसलिए उचित यही है कि आप अपने रहस्य को स्वयं तक ही सीमित रखें। मनुष्य जीवन की परीक्षा में सफल होने के लिए क्या नहीं करता, वो परिश्रम करता है, दौड़ भाग करता है, और ये सब करने के पश्चात भी जब उसका काम नहीं बनता तो वो नकल करता है ना। तनिक लौटिए अपने बचपन में, स्मरण कीजिए अपने बचपन की स्मृतियों का। क्या स्मरण हुआ? विद्यालय में जब आप परीक्षा देने जाते थे तो क्या होता था? आप ना सहे, परंतु कोई ना कोई सफलता पाने के लिए नकल करता ही था और उत्तीर्ण भी हो जाता था, है ना। परंतु जीवन की परीक्षा ऐसी नहीं होती, नकल करने वाला सफल नहीं होता। कारण, विद्यालय में सबके प्रश्न पत्र एक होते थे, परंतु जीवन के प्रश्न पत्र और उनकी कठिनाई सबके लिए भिन्न होती, तो निश्चित रूप से उनके उत्तर भी भिन्न होंगे ना। इसलिए यदि आपको जीवन में सफलता पानी है तो नकल ना कीजिए, स्वयं के प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढिए और सफलता आपकी ही होगी। मनुष्य का जीवन हार और जीत, विजय और पराजय, सफलता और असफलता के मध्य झूलता रहता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, है ना? जब आप सफल होते हैं, किसी चुनौती पर विजय पाते हैं, तो मन प्रसन्नता से आनंद के उपवन में झूमने लगता है, और जब आप असफल होते हैं तब मन दुख और पीड़ा के सागर में डूबने लगता है। परंतु वास्तव में सफलता और असफलता है क्या? तनिक ध्यान से सोचिए, ये केवल हमारी मनोस्थिति मात्र है। हमारी पराजय तब नहीं होती जब हमारा शत्रु विजय प्राप्त कर ले, हमारी पराजय तब होती है जब हम पराजय स्वीकार करें। हम असफल तब नहीं होते जब हम लक्ष्य ना पा सके, हम असफल तब होते हैं जब हम प्रयास करना बंद कर दें। इसलिए प्रयास करते रहें और हार ना माने, क्योंकि जिस दिन आप हार स्वीकारना बंद कर देंगे, जीत आप

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बुंदे रुकी जाएंगा तो हूँ थाए
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएंगा खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनो ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित अगर चाहो तेज दिमाग ने स्वस्थ जीवन तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन
0: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व नी कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके
2: जल्दी थकान थावी शारीरिक कमजोरी याददाश्त में कमी श्वास फूलवो आ सब एनीमिया ना लक्षण है
0: होवे भाईन बोनू आ लक्षण आपड़ने आपड़े मई देखाय तो आपड़ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निशुल्क जांच करावी सुवे
2: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निशुल्क मले है
0: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी गुड़ बाजरा तिल नींबू ने संतरा गोभी तरबूज आंवला टमाटर नु सेवन करवो सुवे
2: होवे आ सब सावधानी रखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा।

कार्यक्रम खेतीबाड़ी हमरावा रा हंगरे किसान भाई बोना ने आपनी बोन जागृति नु राम राम। आप सब हमरे रहो आपड़ो सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनु स्वागत कर रहा अपने आज ने कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। जिम के किसान भाई बोन अपने रोज कार्यक्रम खेतीबाड़ी लेने हाजिर थे इस एक नया विषय ने हाथे तो आज नु एक नव विषय जुड़ाई रू है। आज नु विषय है पोषण समिति खेती हूँ कहवाय ने आनु हूँ महत्व है। तो आ सब बातें आज आप करेंगे पर कार्यक्रम की शुरुआत में आपने हमरे ला गीत ने मोरे कर अपनी बातें आप हम बरतरो आपड़ो रेडियो अपनी बातें वागर रेडियो 90.8 FM माते।

0: खेती से पूर्ण हो जाए है।
1: बिल्कुल
0: ठीक है। इसमें से चाहे हम सब्जी, फल, मसाले, अनाज, जो भी सामग्री पोषण के रूप में आती है वो सारी चीजें लगभग हम सारी चीजें हमारी खेती से ले हुए, हमारी दालें हैं
1: जी।
0: है ना, ये सारी चीजें हम हमारी खेती से प्राप्त कर ले हुए, और हमको ऐसी प्लानिंग करके खेती करनी चाहिए ताकि हम हमारी दूसरी जरूरतें हैं उनके लिए भी उसी जमीन में से खेती हो जाए, और हमारे परिवार की पोषण की आपूर्ति के लिए भी जो हमारे पास उपलब्ध जमीन है उसी से पूर्ति हो जाए, और वर्ष भर के लिए वो सारी चीजें पर्याप्त हो।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि हमारे घर पे जो उगी हुई चीजें हैं वो ज्यादा पौष्टिक है, फ्रेश है ना, और हम बाजार में से लेने जाएंगे तो वो कोल्ड स्टोरेज में पड़ी होगी, इस मतलब पिछले साल पकी हुई चीजें होगी जो कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके रखी हुई होगी और वो आपको आज उपलब्ध होगी। पता नहीं वहां पे सिंचाई के लिए उनको कौन सा पानी दिया गया है, कौन सा खाद डाला है, कौन सा पेस्टिसाइड डाला है, हमको कुछ नहीं पता है। हम बाजार में जाते हैं, सब्जी देखते हैं, रंग देखते हैं और ले आते हैं। लेकिन उसके साथ में हम कितना जो है बीमारियां, मतलब वो पोषण के साथ में हम कुपोषण साथ में घर पे ले आते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो पोषण की दृष्टि से देखते हुए कि हमारे खुद को हमको स्वावलंबी हमारे पोषण के लिए बनना जरूरी है, हमारा जो खेती है पोषण को लेके उसको स्वशासी बनाना जरूरी है, और हमारा जो स्वराज है, जो पोषण स्वराज है, वो तभी कायम हो सकेगा जब हमारी अधिकतर जरूरत की चीजें हमारी खेती से निकलेगी और हमारा परिवार की पोषण की जरूरत है हमारी खेती बाड़ी से पूर्ण होगी।
1: बिल्कुल सर।
0: और इसी को ही हम पोषण संवेदी खेती कहेंगे।
1: बिल्कुल सर। तो सर ये तो आपने बताया कि पोषण संवेदी खेती होती क्या है, यही हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे पोषण संवेदी खेती हमारे किसान भाई बहन करते हैं, पोषण युक्त चीजें लगाते हैं, तो उनको क्या लाभ हो सकता है?
0: देखिए, पोषण संवेदी खेती जो किसान करेगा, एक तो सर्वप्रथम उसके खाने में विविधता बढ़ेगी।
1: बिल्कुल सर।
0: है ना,
1: खाने में अच्छा रहेगा।
0: बिल्कुल, विविधता बढ़ेगी, अलग अलग प्रकार का खाना खाएगा, अनाज में भी वो ऐसा नहीं है कि सीजन वाइज अलग अलग अनाज खाएगा, ठीक है, उसको ज्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी, वो छोटा अनाज भी खाएगा, बड़ा मोटा अनाज भी खाएगा, है ना, गेहूं भी खाएगा, गेहूं के साथ में वो प्रोटीन के लिए दलहन भी मिला के खाएगा, हरी सब्जियां भी मिलेगी, कंदमूल फल वाली सब्जियां भी मिलेगी उसको, हरे पत्तेदार सब्जियां भी मिलेगी, और पौष्टिक सब्जियां जैसे गाजर वगैरह, ये सारी चीजें है, विटामिन और प्रोटीन से भरपूर फल है, वो सारे मिलेंगे
1: जी।
0: तो उससे परिवार का स्वास्थ्य है अच्छा रहेगा और कम बीमार पड़ेंगे तो जो परिवार के स्वास्थ्य की लागत है वो कम हो जाएगी, और जो लागत कम होना यानी कि परिवार की बचत।
1: बिल्कुल।
0: और इसके साथ ही जो वो बाजार में अपने पोषण के लिए खर्च जो करता था वो भी बचेगा, जैसे सब्जी लाने में, दाल लाने में, फल लाने में, ठीक है, या कोई दूसरा प्रकार का अनाज लाने में, तो इस प्रकार से जो है उनको इससे फायदा होगा। साथ ही पोषण संवेदी खेती तंत्र करने से जो जमीन है हमारी, जो धरती माता हम बोलते हैं, ठीक है, उसकी भी सुरक्षा होगी।
1: बिल्कुल, वो बंजर होने से ही बचेगी।
0: हाँ, बंजर होने से बचेगी, क्योंकि हम उसके लिए हमारे घर पे खाने के हिसाब से हम प्लान करेंगे, और क्योंकि हम पोषण के प्रति उसके ऊपर संवेदी होके खेती करेंगे तो हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारे स्वास्थ्य का, और साथ ही हम मर्दा के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे।
1: बिल्कुल।
0: उसमें हम रासायनिक उर्वरक नहीं डालेंगे
1: जी जी।
0: हम देसी खाद का उपयोग करेंगे, हम जीवामृत का उपयोग करेंगे। मान लो कोई प्रकोप बीमारी का आया फसल पे, तो भी हम उस पे 10 परणी का छिड़काव करेंगे, हम नीम पेस्ट का छिड़काव करेंगे
1: जी जी।
0: हम अलग अलग प्रकार की जैविक जो तकनीकी है उसका उपयोग करके और उसका रोकथाम करेंगे, न कि हम जो रहे रासायनिक दवाइयां छिड़क के और उनको कंट्रोल करेंगे।
1: बिल्कुल सर।
0: और साथ ही जैसे जो है बीमारियों से जो इनके ये जो रासायनिक खाद है या रासायनिक दवाइयां है, जहर है, यह अपने साथ में बीमारियां भरपूर लाता है और आप

0: ने सबने सुना ही होगा कि कैंसर की ट्रेन है वो पेस्टिसाइड का उपयोग ज्यादा करने से और फर्टिलाइजर का उपयोग ज्यादा करने से ही आज पंजाब से कैंसर की ट्रेन चलती है और उस ट्रेन का नाम कैंसर की ट्रेन ही है। तो ऐसा इन सब चीजों से बचने के लिए हमारी खेती का प्लानिंग हम पोषण संवेदी खेती तंत्र के अनुसार करें और सर्वप्रथम हमारे परिवार के लिए करें, फिर जो भी हमारा जो बचता है वो हम दूसरों को दे, हम एक चीज दूसरों को दे के उसके चीज के बदले में अनाज के बदले में अनाज ले सकते हैं, सब्जी के बदले में सब्जी ले सकते हैं, सब्जी के बदले में दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, इस तरह से। और उसमें जो उपयोग भी है वो देसी बीजों का, पोषण संवेदी खेती तंत्र में देसी बीजों का उपयोग होता है, ठीक है, हाइब्रिड बीजों का उपयोग नहीं होता है
1: जी जी।
0: क्योंकि वो जेनेटिक मॉडिफाइड बीज है। अभी तक मतलब साइंटिफिकली ये चीज तो प्रूव नहीं हुई है कि वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन ये सोचना चाहिए कि जो उसकी जीन्स है उनके अंदर वो परिवर्तन करके और उस तरह से उन फसलों को या उन बीजों को बनाया गया है, तो वो निश्चित रूप से जो है जिनकी जेनेटिक्स के साथ खिलवाड़ हुआ है वो जरूर कहीं ना कहीं हमारे शरीर को भी नुकसान या हानिकारक हमारे लिए हो सकता है।
1: बिल्कुल सर। तो सर जैसा कि आपने पोषण संवेदी खेती के बारे में बताया कि पोषण संवेदी खेती क्या है और इसके क्या लाभ हो सकते हैं, आपने बताया कि अगर हमारे किसान भाई बहन पोषण संवेदी खेती करते हैं तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं, साथ ही वो अपनी जो भूमि है, अपनी जो धरती माता है, उसको बंजर होने से बचा सकते हैं और उन्हें तरह तरह की विविधता वाले खाने की थाली भी उनको मिल सकती है। और साथ ही हम कह सकते हैं कि अगर उन ज्यादा कुछ पक जाता है तो बाजार में जाकर इसको बेच सकते हैं, जिससे उनकी आजीविका भी चल सकती है।
0: आजीविका चल सकती है, साथ ही जिनको वो देंगे या जिनका वो उपयोग करेंगे उनके स्वास्थ्य के लिए भी वो चीजें अच्छी होगी।
1: बिल्कुल सर। तो सर जैसे कि पोषण संवेदी खेती के बारे में हम बात ही कर रहे हैं, तो आप अंत में हमारे किसान भाई बहनों को क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं किसान भाइयों को एक ही संदेश देना चाहूंगा
1: जी।
0: कि हमारी जो खेती है हमको मतलब दृष्टि से सोचने की जरूरत है कि हम जो उगा रहे हैं क्या खा रहे हैं, क्या मैं उगा रहा हूँ वो मैं खा रहा हूँ या नहीं खा रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मैं उगा रहा हूँ वो बाजार में बेच रहा हूँ और जो मैं खा रहा हूँ वो मैं बाजार से खरीद के ला रहा हूँ।
1: बिल्कुल सर।
0: ऐसा कतई नहीं होना चाहिए क्योंकि किसान है वो अन्नदाता है और अन्नदाता को अपने लिए भी अन्न उगाना चाहिए और दूसरों के लिए भी अन्न उगाना अन्नदाता का दायित्व है।
1: बिल्कुल सर। तो सर जैसा कि आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि हमारे जो किसान भाई बहन है वो जो उगा रहे हैं वो कहीं बाजार में बेच कर और बाजार वाली चीजें वो न खाए, उसके लिए आपने बताया कि जो हम उगा रहे हैं वही हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक है। तो आपने पोषण संवेदी खेती के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाई बहनों को दी और आप हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: किसान भाई बुन जिम के आज आप स्टूडियो में आई तो सोहन सर इन्हें आपने बताड़ू पोषण संवेदी खेती ने बारे में। अब आप देखी रहो कि टाइम थी गयो है कार्यक्रम थकी सूटा पड़वानो, तो सूटा तो पड़ा पर साथ हमरेला एक और गीत।

बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपनो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपनो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। भाई ने बोनो, आप एक कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपने रह हां, या आपने ने कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपने हाल हां, ये भी आपना थकी कई आश राके है। हो भी अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपने हरते जीवंगा। प्रकृति आपकी जरूरत नहीं बल्कि आपकी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपने धरती ने जीवन दान आलंगा। होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो। होवे आज नाना कदम है, ई आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है। वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात नी शुरुआत पानी थकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात्काली नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड थकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरो, आज जीवन नो सहारो है, आज थकी आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आस है सेहत नु असली राज। वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा ज्वार रागी नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू, भारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो, मोटू अनाज अपनावंगा शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर, लेकर हाजिर हो चुकी हूं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है स्वस्थ रहने के लिए केवल दवाइयों की नहीं बल्कि सही पोषण पौष्टिक भोजन की भी जरूरत होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे घर के छोटे से आंगन में उगने वाली सब्जियां हमारे पूरे परिवार के स्वास्थ्य को बेहतर बना सकती है। आज हम बात करेंगे घर के आंगन की पोषण वाटिका और परिवार के स्वास्थ्य को लेकर। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि मैंने आपको गीत से पहले विषय से रूबरू कराया था कि आज हम बात करने वाले हैं घर के आंगन की पोषण वाटिका और परिवार के स्वास्थ्य को लेकर। तो श्रोता साथियों, हम बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक छोटी सी कहानी हम सुनते हैं जो कि सीमा और रीना नाम की महिला से जुड़ी हुई है।
1: अरे रीना, सुबह सुबह तुम आंगन में क्या कर रही हो?
2: अरे सीमा, आओ मैं अपनी पोषण वाटिका में सब्जियों को पानी दे रही हूँ।
1: पोषण वाटिका, ये क्या नई चीज शुरू कर दी तुमने?
2: नई कहाँ है, घर के आंगन या आसपास की खाली जगह में जरूरत की सब्जियाँ और पौष्टिक चीजें उगाना ही तो पोषण वाटिका है।
1: लेकिन इससे क्या फायदा, बाजार में सब्जी खरीद लेंगे ना?
2: अरे खरीद तो सकते हैं सीमा, लेकिन सोचो अगर घर में ही ताजी हरी सब्जियाँ मिल जाए तो पैसे की भी कितनी बचत होगी और परिवार को पौष्टिक भोजन भी मिलेगा।
1: हाँ ये बात तो सही है, लेकिन मेरे घर में तो ज्यादा जगह ही नहीं है।
2: अरे ज्यादा जगह होना जरूरी बिल्कुल नहीं है, बस छोटी सी जगह चाहिए। उस छोटी सी जगह पर गमले, पुराने डिब्बे या खाली जगह का उपयोग करके कई तरह की सब्जियाँ उगाई जा सकती है।
0: तो श्रोता साथियों, ये सीमा और रीना की हमने बातें सुनी। यहीं अब हम हमारे कार्यक्रम के माध्यम से विषय विशेषज्ञों को जोड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर पोषण वाटिका हमारे स्वास्थ्य और परिवार के पोषण के लिए कितने जरूरी है। तो आइए इसी विषय पर एनएम विशेषज्ञ की राय से जानते हैं कि पोषण वाटिका का हमारे जीवन में क्या महत्व है।
3: नमस्कार।
4: नमस्ते।
3: आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं वागड़ रेडियो परिवार में। जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रही हैं तो सबसे पहले मैं कार्यक्रम में आपका परिचय जानना चाहूंगी।
4: जी, मेरा नाम वीणा पटेल है, मैं उप स्वास्थ्य केंद्र कुपड़ा में कार्यरत हूँ।
3: बिल्कुल,
4: एनएम के पोस्ट पर।
3: बिल्कुल, तो जैसा कि आप एनएम की पोस्ट पर कार्यरत हैं तो सबसे पहले मैं कार्यक्रम में ये जानना चाहूंगी कि पोषण वाटिका क्या होती है और किस तरीके से हमारी जो महिलाएं हैं वो घर पर इसे लगा सकती हैं।
4: पोषण वाटिका घर आंगन के किसी भी कोने में या गमलों में, छत पे किसी परिंडे में, बाल्टियों में, टब में ऐसे छोटे छोटे पौधे लगाकर सब्जियों को उगाए उसे अपने घर में उपयोग में ला सकते हैं।
3: बिल्कुल, तो जैसा कि आपने बताया कि पोषण वाटिका जो है वो हम हमारे घर के आंगन में कोई खाली जगह हो वहाँ पर लगा सकते हैं। तो हर घर में पोषण वाटिका क्यों होनी चाहिए?
4: हर घर में पोषण वाटिका का फायदा यह है कि इससे हमें पौष्टिक और ताज़ी सब्जियाँ घर में ही मिल सके, पास में ही मिल सके, हमें बार बार बाजार में जाने की जरूरत ना पड़े और इसकी जो गुणवत्ता है वो हमें पूरी तरह से मिल सके।
3: बिल्कुल, तो जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से अगर हम पोषण वाटिका अपने घर पर ही लगाते हैं तो रंग बिरंगी सब्जियाँ हमें हमारे घर पर ही मिल जाती है, बाजार पर हमें डिपेंड रहने की जरूरत नहीं रहती है और घर पर उगाई गई सब्जियाँ हम देखते हैं कि पौष्टिक भी होती है। तो कम जगह में कौन सी सब्जियाँ उगा सकते हैं हम?
4: जिस परिवार के पास अगर बड़ी ज़मीन ना हो और वे कम जगह में सब्जियाँ उगाना चाहता हो तो अपने छोटे से आंगन के किसी कोने में छत या गमलों का उपयोग करके उसमें पालक, मेथी, धनिया, हरी मिर्ची, टमाटर, बैंगन जैसी सब्जियाँ उगा सकते हैं। लौकी, तुरई और खीरे जैसी सब्जियाँ जो बेल में लगती हो वो बेलों को भी सहारा देकर चढ़ा सकते हैं जिससे उससे ज़मीन कम गिरती है और उपलब्ध जगह का अच्छा उपयोग भी हो जाता है। सब्जियों का चुनाव करते समय हमें बस ये ध्यान रखना चाहिए कि उस मौसम में और उस मिट्टी में किस तरह की सब्जियां हम उगा सकते हैं।
3: बिल्कुल, तो बरसात के बाद कौन सी सब्जियां लगाना सही रहेगा?
4: हाँ, बरसात का ख़त्म होते जैसे हम मौसम बदलता रहता है इसकी वजह से हमें उस समय कौन सी सब्जियाँ अनुकूल है स्थानीय मौसम के अनुसार उनका चयन करना पड़ेगा। जैसे कि हम इस समय हमारे क्षेत्र के अनुसार है पालक, मेथी, धनिया, मूली, गाजर, मटर जैसे सब्जियाँ लगाई जा सके। जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्ची जैसे सब्जियाँ भी उपलब्ध होती है पर उनके लिए हमें थोड़ी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। लेकिन हर क्षेत्र का मौसम और मिट्टी अलग होती है इसलिए स्थानीय कृषि विशेषज्ञ या किसी कृषि विभाग से ही सलाह लेना हमारे लिए बेहतर होगा।
3: बिल्कुल,
4: बीज बोने से पहले भी मिट्टी को तैयार करना और जल की निकासी की व्यवस्था पहले से तैयार करनी पड़ती है।
3: बिल्कुल,
4: इस तरह मौसम के अनुसार फसल चुनने में पोषण वाटिका अच्छी पैदावार मिलने की संभावना भी बढ़ाता है।
3: बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि हम इस मौसम में कौन कौन सी सब्जियां उगा सकते हैं और किन विशेष बातों का हमें ध्यान रखने की जरूरत है, यही हम बच्चों को बागवानी से कैसे जोड़ें?
4: बच्चों को बागवानी से जोड़ना बहुत जरूरी है। और बच्चों को बागवानी से जुड़ने के लिए सबसे सीखने और आनंद लेने का एक अच्छा तरीका भी हो सकता है, एक अच्छा माध्यम होगा। उन्हें बीज बोने, पौधों को पानी देने और पौधों को बढ़ते हुए देखने में छोटे छोटे काम दिए जा सकते हैं। बच्चों को बताया जा सकता है कि कौन सा पौधा कौन सी सब्जी देगा हमें, उसे खाने से हमें क्या क्या फायदे होंगे, वो हमारे शरीर के लिए कैसे उपयोगी होगा।
5: जी।
4: स्कूल में भी अगर शिक्षक को बच्चों को थोड़ा पौधों के बारे में बताएं, उनकी ऊंचाई, पत्तियों के विकास और उनका रिकॉर्ड रखने की गतिविधियाँ दे करा सकते हैं, इससे बच्चों में प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी और पौष्टिक भोजन के प्रति रुचि भी बढ़ेगी। सबसे अच्छी बात है कि जब बच्चे खुद उन सब्जियों को उगाएंगे, उन्हें बढ़ता देखेंगे, तो उन्हें खाने में उनकी रुचि बढ़ेगी।
5: बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि हम बच्चों की रुचि को कैसे बढ़ा सकते हैं और क्या हमें चीज़ें करने की ज़रूरत है, यही हम देखते हैं कि रासायनिक खाद की जगह हम कौन सी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि पोषण वाटिका जब हम घर पर लगाते हैं तो हमें इनमें कुछ जैविक चीज़ों का कार्य करने की ज़रूरत होती है, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम उपयोग करें?
4: जैविक चीज़ों से हम बता सकते हैं कि हम जैसे घर से निकले वाले कचरे को उसका सही उपयोग करके उसकी अच्छी जैविक खाद तैयार करा सकते हैं, जैसे पेड़ पौधे के सूखे पत्ते हों, सब्जियों और फलों के छिलके हों, इन सब को हम जैविक पदार्थों में इसमें मिलाकर उसके कंपोस्ट बनाए जा सकते हैं। वर्मिंग कंपोस्ट का भी एक उपयोगी विकल्प हो सकता है।
5: बिल्कुल।
4: जिसे उचित तरीके से तैयार करके मिट्टी में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा गोबर से बनी अच्छी तरह से तैयार खाद का भी हम उपयोग कर सकते हैं।
5: जी।
4: लेकिन अगर किसी खाद या जैविक घोल का इस्तेमाल उसकी सही मात्रा और सही तरीके से करना जरूरी है। स्थानीय कृषि विशेषज्ञ से सलाह लेने के बाद ही हमें प्राकृतिक खाद का उपयोग करने से मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने में भी मदद मिलती है।
5: बिल्कुल। तो जैसा कि आप हमें बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, तो यही मैं जानना चाहूँगी कि आदिवासी क्षेत्रों में कौन सी पारंपरिक सब्जियाँ पौष्टिक हैं।
4: आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों की पारंपरिक खाद्य और परंपराओं में कई स्थानीय पत्तेदार सब्जियां हैं, जैसे कंद मूल हैं, फलियां हैं, मौसमी खाद्य पदार्थ शामिल रहे। कई स्थानीय साग और हरी पत्तेदार सब्जियां भोजन के महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को जोड़ सकते हैं, जैसे चौलाई, बथुआ, सहजन की पत्तियां, सहजन की फलियां। स्थानीय साग और क्षेत्र में प्रचलित दूसरी खाद्य वनस्पतियों का भी उपयोग परंपरागत रूप से कई जगह किया जाता रहा है।
5: बिल्कुल।
4: लेकिन किसी भी जंगली पौधे या साग को बिना पहचाने और जानकारी के खाना उचित नहीं है।
5: बिल्कुल।
4: स्थानीय रूप से पहचाने जाने वाले और सुरक्षित खाद्य पदार्थों को मौसम के अनुसार भोजन में शामिल करना चाहिए, इससे हमारे स्थानीय खाद्य परंपरा, जैविक विविधता और पोषण, ये तीनों ही हमें मजबूत करने में मदद मिलती है।
5: बिल्कुल। यही पोषण वाटिका अगर कोई परिवार लगा रहा है तो खर्च कितना कम हो सकता है?
4: हाँ, घर में अगर हम कुछ सब्जियाँ उगाने से बाजार से खरीदे जाने वाली सब्जियों की मात्रा कम हो सकती है और इससे हमारे परिवार के खर्च में बचत भी हो सकती है।
5: बिल्कुल।
4: लेकिन बचत की कोई एक निश्चित राशि हम बता नहीं सकते क्योंकि उस परिवार के आकार, वाटिका के क्षेत्रफल, फसल और मौसम के अनुसार बाजार की कीमतों के पर निर्भर करता है। अगर परिवार नियमित रूप से पालक, मेथी, धनिया, मिर्ची जैसी उपयोगी सब्जियां घर पर ही उगाता है तो छोटी छोटी खरीदारी कम हो सकती है। इसके साथ भी परिवार की ताज़ी सब्जियां घर के पास उपलब्ध हो जाती हैं और घर के जैविक कचरे का भी खाद्य में तैयार करने में उपयोग हो सकता है। बाद से खाद खरीदने का जो खर्चा होता है वो कम हो सकता है।
5: बिल्कुल।
4: इसलिए पोषण वाटिका को बचत के साथ साथ हम बेहतर भोजन की व्यवस्था के रूप में देखना अधिक उपयोगी है।
5: जी बिल्कुल। यही अब मैं जानना चाहूँगी कि आंगनबाड़ी और स्कूल में पोषण वाटिका का क्या महत्व है?
4: जी, आंगनवाड़ी और स्कूलों में पोषण वाटिका बच्चों के लिए एक तरह की जीवंत पाठशाला है। बच्चे किताबों में पढ़ने के साथ साथ अगर उसको आंखों से पौधों को बढ़ते देखें, जैसे प्रैक्टिकली देखेंगे, तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा।
5: बिल्कुल।
4: और उन्हें सब्जियां, स्थानीय खाद्य पदार्थों को संतुलित भोजन के बारे में व्यवहारिक जानकारी मिल सकती है। शिक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों को पौधों की देखभाल, छोटी गतिविधियों में शामिल कर सकते हैं। स्थानीय मौसम के अनुसार उगाई गई सब्जियों का उपयोग, उपलब्ध व्यवस्था और नियम के अनुरूप पोषण संबंधित गतिविधियों में किया जा सकता है।
5: जी जी।
4: इससे बच्चों में प्रकृति, स्वच्छता, पोषण और जिम्मेदारी के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने का अवसर मिलता है।
5: जी बिल्कुल, तो सरकार की कौन कौन सी योजनाएं जो इसमें मदद करती है?
4: देश में पोषण सुधार के लिए पोषण अभियान और आंगनवाड़ी केंद्रों में जुड़ी विविध गतिविधियों के माध्यम से पोषण वाटिका को बढ़ावा दिया गया है। आंगनवाड़ी केंद्रों, स्कूलों और समुदायों के स्तर पर पोषण वाटिका विकसित करने की पहल की जाती रही है। इसके अलावा कृषि विभाग, बागवानी विभाग और स्थानीय प्रशासन की ओर से समय समय पर बीज प्रशिक्षण, तकनीकी जानकारी या अन्य सहायता से जुड़ी योजनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
5: बिल्कुल,
4: इन योजनाओं की जानकारी राज्य और जिले के अनुसार अलग अलग हो सकती है, इसीलिए ग्रामीण परिवार अपने आंगनवाड़ी केंद्र, ग्राम पंचायत, कृषि विभाग या संबंधित सरकारी कार्यालय से वर्तमान सहायता और पात्रता की जानकारी ले सकते हैं। सरकारी योजना का लाभ लेने से पहले यह जरूर पता करें कि आपके क्षेत्र में उस समय कौन सी सुविधा उपलब्ध है, तभी हम उसका फायदा उठा सकेंगे।
5: बिल्कुल, तो क्या गमलों में भी पोषण वाटिका बनाई जा सकती है?
4: जी बिल्कुल, गमले, पुरानी बाल्टियाँ हों, टब हो या अन्य सुरक्षित कंटेनर हों, उनमें भी छोटी छोटी पोषण वाटिकाएँ बनाई जा सकती हैं, जैसे धनिया, मेथी, पालक, हरी मिर्ची जैसे फसलें छोटे कंटेनरों में उगाई जा सकती है और टमाटर और दूसरी अन्य सब्जियाँ के लिए अपेक्षित बड़े कंटेनरों की जरूरत पड़ती है, जो हम उन्हें बड़े कंटेनर का उपयोग कर सकते हैं।
5: बिल्कुल, तो जैसा कि आप कार्यक्रम में बहुत अच्छी जानकारी हमें दे रही हैं, तो अंत में आप हमारे श्रोता साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगी?
4: मेरा बस यही संदेश है कि पोषण वाटिका शुरू करने के लिए बड़े खेत या बहुत अधिक पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है। एक गमले से भी हम शुरुआत कर सकते हैं, आंगन की छोटी सी क्यारी भी लगा सकते हैं, यही बहुत महत्वपूर्ण, खाली महत्वपूर्ण यही है कि हमें पहले शुरुआत करनी है। मौसम के अनुसार स्थानीय पौष्टिक भोजन सब्जियां उगाएं, बच्चों को पौधों की देखभाल से जोड़ें, घर में उपलब्ध जैविक पदार्थों का सही उपयोग करें, यही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखिए, एक छोटा सा पौधा जब हरा होकर हमारी थाली तक पहुंचता है तब वो एक सब्जी ही नहीं होता है, बल्कि वो हमें स्वावलंबन, प्रकृति से जुड़ाव और बेहतर पोषण का भी संदेश भी देता है। इसलिए आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हर घर में थोड़ी हरियाली हो, हर थाली में विविधता हो और हर परिवार में भोजन में पोषण हो।
5: बिल्कुल, तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
4: जी धन्यवाद।
1: रीना, विशेषज्ञ की बात सुनकर मुझे समझ में आ गया कि पोषण वाटिका सिर्फ सब्जी उगाने का नाम नहीं है, बल्कि परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखने का एक अच्छा तरीका भी है।
2: बिल्कुल, हमने बहुत अच्छी बातों को जाना, क्योंकि जब घर में अलग अलग तरह की सब्जियां होंगी ना, तो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को अलग अलग पोषक तत्व मिलेंगे, है ना?
1: हाँ, और बच्चों को भी रोज हरी सब्जियां खाने की आदत पड़ेगी।
2: हाँ, खासकर बच्चों, महिलाओं और पूरे परिवार के लिए संतुलित और विविध भोजन बहुत जरूरी होता है।
1: हाँ रीना, अब तो मैं भी अपने घर में खाली आंगन में कुछ पौधे जरूर लगाऊंगी।
2: हाँ बिल्कुल लगाना, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन फायदे तो पूरे परिवार को मिलेंगे।
1: हाँ रीना, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, अपने घर के छोटी सी पोषण वाटिका परिवार के अच्छे स्वास्थ्य की शुरुआत भी बन सकती है।
2: हाँ बिल्कुल, तो चलो अब से संकल्प लेते हैं कि हम अपने घर के एक छोटे से हिस्से में पोषण वाटिका जरूर लगाएंगे।
1: हाँ जरूर लगाएंगे।
0: तो साथियों, आज की इस छोटी सी कहानी से हमने जाना कि घर के आंगन, छत या उपलब्ध छोटी जगह का उपयोग करके पोषण वाटिका तैयार की जा सकती है। ताजी और विविध सब्जियों को अपने भोजन में शामिल करके हम परिवार के पोषण और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। याद रखिए कि स्वस्थ परिवार की शुरुआत पौष्टिक भोजन से होती है और पौष्टिक भोजन का एक अच्छा सहारा बन सकती है हमारे घर की पोषण वाटिका। तो आशा करते हैं कि आज कार्यक्रम की होने वाली सभी बातचीत आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।
6: चिक तक चिक तक चिक तक।

साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन से विदा लेना चाहेंगे और आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सच्चा बचपन, वाकड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपनी साथी अंजलि पारेश्वर को कार्यक्रम सच्चा बचपन से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: जागृति बुन, आपे कारे सोचू है, अगर आप बुंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है।
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये है, ये हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है, ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, इटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा त आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन।
0: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व नी कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
2: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
0: होवे भाइयों बोनू, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
2: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
0: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
2: होवे आ सब सावधानी रखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
3: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथ ही जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ युवा साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: लेकर हाजिर है श्रोता साथियों कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बातचीत रहने वाली है कि हमें हर समय मजबूत दिखना जरूरी नहीं है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि हम अक्सर सुनते हैं मजबूत बनो, किसी के सामने मत झुको, रोना नहीं, अपनी परेशानी खुद संभालो, लेकिन क्या हर समय मुस्कुराते रहना, अपनी परेशानी छिपाना और ये दिखाना कि हमें किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता वास्तव में मजबूती है? शायद नहीं। कई बार अपनी भावनाओं को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी मजबूती होती है।
0: बिल्कुल।
1: तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जरूर जानेंगे कि हमें हर समय मजबूत दिखना जरूरी नहीं है विषय को लेकर। लेकिन अभी सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत।
0: जी हाँ जागृति जी, तो युवा साथियों आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट के साथ में।

0: दोस्तों इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं, हर समय मजबूत दिखना जरूरी नहीं होता। हम देखते हैं कि मजबूत दिखने का दबाव हमारे युवा साथियों पर बहुत ज्यादा होता है। जागृति जी,
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि आज के युवा जीवन में कई तरह की अपेक्षाओं के बीच जी रहे हैं, जैसे कि पढ़ाई में अच्छा करना है, करियर बनाना है, प्रतियोगिताओं में आगे बढ़ना है, परिवार की उम्मीदों पर खड़ा उतरना है और दोस्तों के बीच ऐसा दिखाना है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। साथ ही सोशल मीडिया ने इस दबाव को और भी बढ़ा दिया है, जैसे कि स्क्रीन पर हमें हर किसी की जिंदगी का खुशनुमा हिस्सा दिखाई देता है। साथियों,
1: बिल्कुल,
0: किसी की सफलता, किसी की नई नौकरी, किसी की उपलब्धि तो किसी की यात्रा, और फिर हम जागृति जी अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों की दिखाई देने वाली जिंदगी से करने लगते हैं। लेकिन साथियों, हमारे मन में ये सवाल आता है कि सब इतने खुश हैं, फिर मैं परेशान क्यों हूँ? सब आगे बढ़ रहे हैं तो मैं पीछे क्यों रह गया? और यहीं से हम अपनी भावनाओं को छिपाना शुरू कर देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: हम लोगों से कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, जबकि भीतर से हम काफी थके हुए हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, थक जाना असफल होना नहीं होता, परेशान होना कमजोरी नहीं है और भावुक होना भी कोई कमी नहीं है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा, क्योंकि हम इंसान हैं, मशीन।

0: नहीं होता। हम में से बहुत से लोग दूसरों के सामने अपनी परेशानी बताने से डरते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने कहा कि हम परेशान हैं तो लोग हमें कमजोर समझेंगे।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन दोस्तों सोचिए कि अगर आपका कोई दोस्त आपसे ये कहे कि आज मेरा मन अच्छा नहीं है, मुझे थोड़ी बात करनी है, तो क्या आप उसे कमजोर कहेंगे? शायद नहीं, आप उसकी बात सुनेंगे, उसका साथ देंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे।
1: जी हाँ।
0: तो फिर जब बात जागृति जी हमारे युवा साथियों की खुद की आती है तो वे अपने लिए इतनी कठोरता क्यों रखते हैं? कभी कभी साथियों किसी भरोसेमंद व्यक्ति से ये कह देना कि मुझे परेशानी हो रही है, मदद मांगना नहीं बल्कि खुद की देखभाल करना होता है।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि मजबूत होने का मतलब ये भी नहीं है कि हमें कभी डर नहीं लगेगा। मजबूत होने का मतलब ये नहीं है कि हमें कभी दुख नहीं होगा श्रोताओं।
0: बिल्कुल।
1: और मजबूत होने का मतलब ये भी नहीं है कि हमें हर समस्या का समाधान अकेले ही करना पड़ेगा। वास्तविक मजबूती तो ये है कि हम अपनी स्थिति को पहचाने, जरूरत पड़ने पर सही व्यक्ति से मदद लें।
0: बिल्कुल।
1: जैसे हम अपने शरीर के बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही मन परेशान होने पर किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना भी सामान्य बात है। मदद मांगना हार नहीं है, मदद मांगना अपने आप को महत्व देना है।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसलिए हमारे युवा साथियों को ये समझना बहुत जरूरी है कि मदद मांगना गलत नहीं होता, क्योंकि युवावस्था जीवन का ऐसा समय होता है जब हमें अपने भविष्य को लेकर बहुत कुछ सोचना होता है दोस्तों। जैसे कि करियर, परीक्षा, नौकरी, रिश्ते, परिवार, आर्थिक जिम्मेदारियां और अपने सपनों को पूरा करने की चिंता।
1: जी हाँ,
0: ऐसी कई चीजें हैं जो एक साथ हमारे मन पर असर डाल सकती है। ऐसे समय में हमें खुद से ये कहना सीखना चाहिए कि मुझे हर दिन परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। कभी मैं बहुत अच्छा करूंगा तो कभी थोड़ा कम। कभी मैं बहुत उत्साहित रहूंगा या रहूंगी तो कभी थक भी सकती हूँ। कभी मुझे दूसरों की जरूरत होगी तो कभी मैं किसी दूसरे का सहारा भी बन सकती हूँ।
1: बिल्कुल।
0: देखा जाए जागृति जी, तो यही हमारा असली जीवन है।
1: जी हाँ कशिश, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही है, हम जान पा रहे हैं कि हर समय मजबूत दिखना जरूरी नहीं है। तो ये बातें निरंतर ऐसे ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी बिल्कुल जागृति जी।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और हमारी बातें चल रही थी कि हर समय हमें मजबूत दिखना जरूरी नहीं है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने जाना था मजबूत दिखने के दबाव के बारे में, साथ ही हम जान पा रहे थे कि भावनाएं कमजोर नहीं इंसान होने की निशानी है।
1: बिल्कुल,
0: मैं ठीक हूँ कहना हमेशा भी जरूरी नहीं है श्रोता साथियों। साथ ही हम जान रहे थे कि कमजोरी स्वीकार करना भी साहस है। इसी के साथ हमने जाना था कशिश की युवाओं के लिए समझना भी बहुत जरूरी है। साथ ही हम जानते हैं कि सोशल मीडिया की चमक और वास्तविक जिंदगी क्या कहती है।
1: बिल्कुल,
0: तो जैसा कि कशिश, सोशल मीडिया पर हम अक्सर लोगों की उपलब्धियां देखते हैं जैसा कि आपने बताया था, लेकिन उनकी परेशानियों को हम नहीं देख पाते हैं। हमें किसी की सफलता दिखाई देती है, उसके संघर्ष के वो दिन नहीं दिखाई देते जब वो बार बार असफल हुआ था। हमें किसी की मुस्कान दिखाई देती है, उसके कठिन दिनों की कहानी याद नहीं रहती। इसलिए श्रोताओं, सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली जिंदगी को अपनी पूरी जिंदगी से तुलना करना उचित नहीं है। याद रखिए, हर मुस्कुराता चेहरा खुश हो ये जरूरी नहीं, और हर शांत व्यक्ति कमजोर हो ये भी जरूरी नहीं। अपनी जिंदगी की गति को स्वीकार करना सीखिए।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि दोस्तों कई बार समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी वह हमारे मन में अकेले रहते हुए हमें लगने लगती है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को आप पहचानिए जिनसे आप खुलकर बात कर सके। वो आपके माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, शिक्षक भी हो सकते हैं, और कोई ऐसा व्यक्ति जो भरोसेमंद हो, या कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति जो आपकी बात बिना मजाक उड़ाए सुन सके। और सिर्फ अपनी बात ही नहीं कहनी श्रोता साथियों, दूसरों की बात सुनना भी आपके लिए जरूरी है।
0: जी हाँ,
1: हो सकता है जागृति जी कि हमारे आसपास कई ऐसे युवा हो जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देते हो, लेकिन अंदर से किसी की परेशानी से गुजर रहे हो। उनसे हमें बस इतना पूछ लेना है कि सब ठीक तो है, अगर बात करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी बात सुन सकता हूँ। कभी कभी किसी को ध्यान से सुन लेना श्रोता साथियों, उसके लिए बहुत मायने रखता है।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि हम दूसरों की गलतियों को माफ कर देते हैं, लेकिन अपनी एक गलती को लेकर खुद को लंबे समय तक दोष देते रहते हैं। परीक्षा में कम अंक आए, हम खुद को असफल समझने लगते हैं। किसी अवसर से चूक गए, हमें लगता है सब खत्म हो गया। लेकिन जिंदगी किसी एक परीक्षा, किसी एक परिणाम या किसी एक असफलता से तय नहीं होती श्रोताओं। गलती का अर्थ अंत नहीं, सीखने का अवसर भी हो सकता है। इसीलिए खुद से बातें करते समय वही शब्द इस्तेमाल कीजिए जो आप अपने किसी अच्छे दोस्त के लिए करते हैं। अपने आप से कहिए कि हाँ, आज मुश्किल था, लेकिन मैं धीरे धीरे आगे बढ़ सकती हूँ या बढ़ सकता हूँ।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ युवा साथियों, हमें मजबूत होने की परिभाषा बदलने की भी जरूरत है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि मजबूत वह नहीं होता जो कभी रोता नहीं है, मजबूत वह भी नहीं होता युवा साथियों जिसे कभी डर नहीं लगता, मजबूत वह भी नहीं है जो हर समस्या अकेले हल करता हो, बल्कि मजबूत तो वह है जो अपनी भावनाओं को पहचाने, जरूरत पड़ने पर मदद मांगे, असफलता से सीख ले, अपनी गलतियों को स्वीकार करे और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करता हो।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही मुश्किल समय के बाद फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करता हो। और देखा जाए जागृति जी, तो यही वास्तविक मजबूती कहलाती है।
0: और हम कह सकते हैं कि श्रोता साथियों, अगर आज आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो आपको हर किसी के सामने मजबूत बनने का अभिनय करने की जरूरत भी नहीं है। आपको हर सवाल का जवाब तुरंत देने की भी जरूरत नहीं है, आपको हर समय मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, आपको हर दिन अपनी पूरी क्षमता से काम करने की भी जरूरत नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: कुछ दिन बस खुद को संभालने के होते हैं। अपनी भावनाओं को जगह दीजिए, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात कीजिए, जरूरत हो तो परिवार, शिक्षक या किसी योग्य मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सहायता लीजिए। और अगर कोई युवा लगातार बहुत ज्यादा परेशान है श्रोताओं, निराश या असहाय महसूस कर रहा है, तो उसे अकेले इससे जूझने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए। किसी भरोसेमंद बड़े व्यक्ति तक बात पहुँचाना एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो इस तरीके से कार्यक्रम युवाओं की आवाज के माध्यम से हम हमारे युवाओं को यही कहना चाहेंगे कि दोस्तों, हर समय मजबूत दिखना जरूरी नहीं होता।
0: बिल्कुल,
1: हर समय मुस्कुराना जरूरी नहीं है, हर समस्या अकेले सुलझाना भी जरूरी नहीं है, कभी रुकना भी जरूरी होता है, कभी खुद को समझना भी जरूरी होता है, और कभी किसी का हाथ थाम कर किसी को अपना हाथ थामने देना भी जरूरी होता है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि जिंदगी में मजबूत वह नहीं होता जो कभी टूटता नहीं है, बल्कि वह भी मजबूत है साथियों जो मुश्किल समय को स्वीकार करता हो, खुद को संभालता हो और धीरे धीरे फिर आगे बढ़ने की कोशिश करता हो। इसलिए अपनी भावनाओं से मत भागिए, उन्हें समझिए, अपनी परेशानियों को मत छिपाइए, सही व्यक्ति से साझा कीजिए और खुद को साथियों कमजोर समझने की बजाय खुद के प्रति थोड़ा और संवेदनशील बनिए। क्योंकि आपको हर समय मजबूत दिखने की नहीं, हर परिस्थिति में खुद के साथ खड़े रहने की जरूरत है।
0: बिल्कुल कशिश, तो हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि श्रोता साथियों, हमारी भावनाएं मायने रखती हैं और हमारी आवाज भी मायने रखती है। मजबूत होने का मतलब भावनाओं को छिपाना नहीं बल्कि उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ना भी है।
1: जी बिल्कुल। तो इन्हीं बातों के साथ और इन्हीं उम्मीदों के साथ दोस्तों आज हम कार्यक्रम के माध्यम से आपसे ढेर सारी बातें कर पाए हैं।
0: जी हाँ,
1: हमने जाना कि किस प्रकार से युवा साथियों को वर्तमान में ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन समस्याओं से डर कर आगे बढ़ना ही सच्ची सफलता है।
0: बिल्कुल।
1: तो बातें जैसा कि हो चुकी है जागृति जी, और समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे युवाओं को यहाँ पर एक और गीत हम सुनवा दें।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज के कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है, विषय है ग्राम सभा, लोकतंत्र को गांव तक पहुंचाने का माध्यम। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि लोकतंत्र केवल संसद और विधानसभा की दीवारों तक सीमित नहीं है। श्रोताओं, लोकतंत्र की असली ताकत तब दिखाई देती है जब गांव का एक सामान्य नागरिक भी अपनी बात कह सके, अपने गांव के विकास पर सवाल पूछ सके और निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनी भागीदारी निभा सके।
0: जी हाँ
1: अंजलि, गांव की इसी लोकतांत्रिक शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण मंच है ग्राम सभा। ग्राम सभा वो स्थान है जहां जनता केवल मतदाता नहीं रहती बल्कि अपने गांव के भविष्य की सहभागी और निर्णयकर्ता भी बनती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आज कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी।
1: जी हाँ,
0: लेकिन कार्यक्रम के पहले गीत के साथ में क्यों ना हम हमारे श्रोता साथियों को मनोरंजन करवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है ग्राम सभा, लोकतंत्र को गांव तक पहुंचाने का माध्यम।
1: बिल्कुल। तो जागृति जी, लोकतंत्र की मजबूती केवल संसद और विधानसभा में होने वाली चर्चाओं से नहीं बल्कि गांव की चौपाल पर उठने वाली आम नागरिक की आवाज से भी तय होती है। जिस दिन गांव का हर व्यक्ति अपने अधिकारों को समझकर अपनी जिम्मेदारी निभाने लगेगा उस दिन लोकतंत्र वास्तव में मजबूत होगा। ग्राम सभा इसी लोकतांत्रिक भावना को गांव-गांव तक पहुंचाने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है।
0: बिल्कुल।
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि भारत को गांवों का देश कहा जाता है। देश की बड़ी आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और गांव का विकास सीधे तौर पर देश के विकास से जुड़ा हुआ है।
0: जी हाँ।
1: इसलिए लोकतंत्र की सफलता तभी पूरी मानी जा सकती है जब लोकतंत्र की भावना देश के अंतिम गांव और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। ग्राम सभा इसी उद्देश्य को पूरा करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है। यह वह मंच है जागृति जी, जहां ग्रामीण नागरिक अपने गांव की समस्याओं, जरूरतों और विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा कर सकते हैं और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि, सरल शब्दों में कहे तो ग्राम सभा गांव के मतदाताओं की सामूहिक सभा है। ये पंचायत व्यवस्था में जनता की सीधी भागीदारी का महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: बिल्कुल।
0: श्रोताओं, ग्राम सभा में गांव के लोग अपने क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करते हैं और पंचायत के कार्यों, विकास योजनाओं के संबंध में अपनी बात भी रखते हैं।
1: बिल्कुल।
0: ग्राम सभा का महत्व इसीलिए भी अधिक है अंजलि, क्योंकि इसमें नागरिक केवल सरकार की योजनाओं के लाभार्थी नहीं रहते बल्कि वे गांव के विकास की प्रक्रिया के सहभागी बनते हैं और यही भावना लोकतंत्र की मूल भावना है।
1: बिल्कुल जागृति जी, यही अब बात आती है कि लोकतंत्र को गांव तक पहुंचाने का माध्यम क्या है।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, लोकतंत्र का अर्थ केवल चुनाव के समय मतदान करना नहीं है। लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ है जनता की भागीदारी, समान अवसर, अपनी बात कहने की स्वतंत्रता, जवाबदेही और सामूहिक निर्णय।
0: जी हाँ।
1: श्रोता साथियों, ग्राम सभा इन सभी मूल्यों को गांव के स्तर पर मजबूत करने का काम करती है। जब गांव का नागरिक ग्राम सभा में बैठकर अपने गांव की समस्याओं पर चर्चा करता है, प्रश्न पूछता है और समाधान के लिए सुझाव देता है, तब लोकतंत्र उनके दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाता है और इसलिए ग्राम सभा को लोकतंत्र की जमीनी पाठशाला कहा जाता है।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि गांव की वास्तविक समस्याओं को सबसे अच्छी तरह गांव के लोग ही समझ सकते हैं। बाहर से बनाई गई योजना हर बार स्थानीय जरूरत के अनुसार प्रभावी हो ये जरूरी भी नहीं है। ग्राम सभा स्थानीय लोगों को अपनी समस्याएं सामने रखने का अवसर देती है।
1: बिल्कुल।
0: हम देखते हैं कि गांव में पीने के पानी की समस्या है, सड़क खराब है, विद्यालयों में सुविधाओं की कमी है, स्वास्थ्य सेवा पर्याप्त नहीं है, नाली और स्वच्छता की समस्या है या रोजगार के अवसर कम है। इन सभी विषयों को ग्राम सभा में उठाया जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: इससे विकास की प्राथमिकताएं वास्तविक जरूरतों के आधार पर तय करने में हमें मदद मिलती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, यही अब बात आती है विकास योजनाओं में जनभागीदारी की। श्रोता साथियों, किसी भी गांव का विकास केवल सरकारी योजनाओं से नहीं हो सकता, इसके लिए ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।
0: बिल्कुल।
1: ग्राम सभा लोगों को यह अवसर देती है जागृति जी कि वे अपने गांव के विकास की योजनाओं पर विचार करें और अपनी प्राथमिकताएं सामने रखें। जब ग्रामीण स्वयं विकास कार्यों की योजना बनाने और उनकी निगरानी में भाग लेते हैं तो उनमें अपने गांव के प्रति जिम्मेदारी की भावना पड़ती है।
0: बिल्कुल।
1: और यही लोकतंत्र की सुंदरता है, सरकार के साथ जनता और योजना के साथ जनभागीदारी।
0: जी हाँ अंजलि, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही है कि ग्राम सभा लोकतंत्र को गांव तक पहुंचाने का माध्यम किस तरह से हो सकती है, तो इस विषय पर बातें हमारी बनी रहेंगी कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि ग्राम सभा क्या है, लोकतंत्र को गांव तक पहुंचाने का माध्यम क्या है, गांव की समस्या हम कैसे पहचाने, साथ ही हमने जाना विकास योजनाओं में जन भागीदारी के बारे में। यहीं अब बात आती है जागृति जी, पारदर्शिता और जवाबदेही की। तो श्रोता साथियों, लोकतंत्र में जनता को यह जानने का अधिकार है कि उसके क्षेत्र के विकास के लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं और सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग किस प्रकार हो रहा है। ग्राम सभा इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पंचायत के कार्यों, योजनाओं और विकास गतिविधियों पर चर्चा होने से पारदर्शिता भी बढ़ सकती है। ग्रामीण अपने सवाल और सुझाव सामने रख सकते हैं। जब जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के सामने जनता सक्रिय रूप से सवाल करती है जागृति जी, तो जवाबदेही की भावना मजबूत होती है। जहाँ सवाल पूछने की संस्कृति होती है श्रोता साथियों, वहाँ व्यवस्था में सुधार की संभावनाएं भी बढ़ जाती है।
1: बिल्कुल अंजलि, जैसा कि आपने बताया कि पारदर्शिता और जवाबदेही क्या होती है, यही अगर हम हमारी महिलाओं की भागीदारी को लेकर हम बात करें तो गांव के विकास में महिलाओं की भूमिका बहुत जरूरी है। पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, परिवार और आजीविका से जुड़े कई सारे विषय महिलाओं के दैनिक जीवन से जुड़े होते हैं। अगर ग्राम सभा में महिलाएं सक्रिय रूप से भाग लेती है तो विकास की चर्चा और अधिक व्यापक बनती है। महिलाओं की आवाज गांव की प्राथमिकताओं को बेहतर तरीके से सामने ला सकती है। इसीलिए श्रोताओं, आवश्यक है कि ग्राम सभा में महिलाओं को केवल उपस्थित रहने तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उन्हें अपनी बात रखने और निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर मिले।
0: बिल्कुल जागृति जी, यही युवाओं को लेकर बात करें तो श्रोता साथियों, आज गांवों के युवा शिक्षा, तकनीकी, रोजगार और नए विचारों से जुड़े हुए हैं।
1: बिल्कुल,
0: युवाओं में गांव को आगे ले जाने की बड़ी क्षमता है। ग्राम सभा युवाओं को अपनी ऊर्जा और विचारों का सकारात्मक उपयोग करने का मंच दे सकती है। युवा डिजिटल शिक्षा, कौशल विकास, खेल, रोजगार, उद्यमिता, पर्यावरण संरक्षण और तकनीकी से जुड़े विषय ग्राम सभा में उठा सकते हैं।
1: जी हाँ,
0: युवा यदि ग्राम सभा की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लें तो केवल अपने भविष्य के बारे में नहीं बल्कि पूरे गांव के भविष्य के बारे में सोचने की आदत को विकसित कर सकते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि लोकतंत्र की सफलता इस बात से भी तय होती है कि समाज के कमजोर और वंचित वर्गों की आवाज कितनी सुनी जा रही है। ग्राम सभा का उद्देश्य ऐसा वातावरण बनाना होना चाहिए जहां प्रत्येक व्यक्ति सम्मान के साथ अपनी बात को रख सके। गरीब परिवारों, छोटे किसानों, मजदूर, महिलाओं, बुजुर्ग और अन्य जरूरतमंद लोगों की समस्याओं को विकास की मुख्य धारा में शामिल करना बहुत जरूरी है। कहा भी गया है कि लोकतंत्र वही मजबूत है जिसमें सबसे कमजोर व्यक्ति की आवाज भी सुनी जाए।
0: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि ग्राम सभा केवल सरकारी योजनाओं की चर्चा तक सीमित नहीं होनी चाहिए, यह गांव की सामाजिक समस्याओं पर संवाद का मंच भी बन सकती
1: बिल्कुल।
0: है। बाल विवाह, नशे की समस्या, अशिक्षा, स्वच्छता, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, पलायन और सामाजिक भेदभाव जैसे विषयों पर सामूहिक चर्चा की जा सकती है। जब किसी समस्या का समाधान गांव के लोग मिलकर खोजते हैं श्रोता साथियों, तो उस समाधान के सफल होने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। कहना चाहेंगे कि गांव का जीवन जल, जमीन और जंगल जैसे प्राकृतिक संसाधनों से गहराई से जुड़ा हुआ है।
1: बिल्कुल,
0: पानी की कमी, भूजल स्तर में गिरावट, प्राकृतिक संसाधनों का असंतुलित उपयोग ग्रामीण जीवन को प्रभावित कर सकता है। ग्राम सभा में जल संरक्षण, तालाबों की देखभाल, वर्षा जल संचयन, वृक्षारोपण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर चर्चा की जा सकती है। यदि जागृति जी गांव अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए सामूहिक संकल्प ले तो आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य की तैयारी की जा सकती है।
1: बिल्कुल अंजलि, जैसा कि आपने जल और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में बताया, साथ ही सामाजिक समस्याओं के समाधान के मंच को लेकर हमने बात की, यहीं शिक्षा और स्वास्थ्य पर बात करते हैं। जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी समाज की नींव है। ग्राम सभा में विद्यालयों की स्थिति, बच्चों की शिक्षा, स्कूल छोड़ने वाले बच्चे, स्वास्थ्य सेवाओं, पोषण और स्वच्छता जैसे विषयों पर चर्चा की जा सकती है।
0: बिल्कुल,
1: गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और प्रत्येक परिवार को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा मिले, ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि समाज की भी साझा जिम्मेदारी है। महात्मा गांधी जी ने ग्राम स्वराज की कल्पना ऐसे गाँव के रूप में की थी श्रोताओं, जो अपने विकास और निर्णयों में आत्मनिर्भर तथा सहभागी हो। ग्राम सभा इसी विचार को जमीन पर मजबूत करने का माध्यम बन सकती है। अंजलि, सच्चा स्वराज केवल सत्ता के हस्तांतरण का नाम नहीं है। सच्चा स्वराज तब है जब व्यक्ति अपने अधिकारों के साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी समझे और अपने समुदाय के विकास में अपना योगदान दे। जब गाँव के लोग मिलकर निर्णय लेते हैं अंजलि, अपने संसाधनों की रक्षा करते हैं और विकास कार्यों की निगरानी करते हैं, तब ग्राम स्वराज की भावना और भी मजबूत बन जाती है।
0: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि ग्राम सभा की सफलता केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि बैठक हुई है या नहीं। असली सफलता तब होती है जब लोग बैठक में सक्रिय रूप से भाग लें। हमें ग्राम सभा को केवल औपचारिक बैठक न मानकर श्रोता साथियों संवाद और समाधान का मंच बनाना होगा।
1: बिल्कुल,
0: लोगों को अपनी समस्या रखने के साथ साथ समाधान के सुझाव भी देने चाहिए। समस्या बताने वाला नागरिक महत्वपूर्ण है, लेकिन समाधान में भाग लेने वाला नागरिक लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। लोकतंत्र में अधिकारों के साथ जिम्मेदारियां भी होती हैं। ग्राम सभा में भाग लेना, सही जानकारी प्राप्त करना, योजनाओं को समझना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, स्वच्छता बनाए रखना और विकास कार्यों में सहयोग करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। यदि हम हर समस्या के लिए केवल सरकार की ओर देखें और स्वयं कोई जिम्मेदारी न लें तो लोकतंत्र की भावना अधूरी रह जाएगी।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि आज तकनीक ने जानकारी तक पहुंच आसान कर दी है, यह हम सभी जानते हैं। डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके ग्राम सभा की सूचनाएं अधिक लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। योजना और विकास कार्यों से संबंधित जानकारी को सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाने से नागरिक अधिक जागरूक हो सकते हैं। युवा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकते हैं। वे डिजिटल तकनीक के माध्यम से गांव के लोगों को सरकारी योजना और नागरिक अधिकारों से जुड़ी सामान्य जानकारी समझाने में भी सहयोग कर सकते हैं।
0: जी हाँ।
1: तो हम कह सकते हैं कि ग्राम सभा को मजबूत बनाने के लिए हमें क्या करना है। जैसे कि श्रोता साथियों, ग्राम सभा को अगर मजबूत बनाना है तो ग्राम सभा की बैठकों की जानकारी समय पर सभी ग्रामीणों तक पहुंचाई जानी चाहिए।
0: जी हाँ।
1: महिला और युवाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए। स्थानीय समस्याओं पर प्राथमिकता के आधार पर हमें चर्चा करनी चाहिए। योजना और विकास कार्यों की जानकारी सरल भाषा में साझा करनी चाहिए। साथ ही ग्रामीणों को प्रश्न पूछने और सुझाव देने का अवसर भी मिलना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की समस्याओं को विशेष महत्व भी दिया जाना चाहिए। लिए गए निर्णयों की प्रगति पर आगे की बैठकों में चर्चा होनी चाहिए। साथ ही ग्राम सभा को केवल औपचारिकता नहीं बल्कि संवाद और समाधान का मंच बनाया जाए।
0: बिल्कुल,
1: इससे हम कह सकते हैं अंजलि कि ग्राम सभा मजबूत बन सकती है।
0: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि ग्राम सभा लोकतंत्र की वह मजबूत कड़ी है जो शासन और जनता के बीच सीधा संबंध स्थापित करती
1: बिल्कुल।
0: है। यह गांव के नागरिक को यह एहसास कराती है कि वह केवल किसी योजना का लाभ लेने वाला व्यक्ति नहीं बल्कि अपने गांव के विकास का सक्रिय भागीदार है। लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति तभी सामने आएगी जब गांव का नागरिक जागरूक होगा, सवाल पूछेगा, अपनी बात रखेगा और अपने कर्तव्यों को समझेगा। ग्राम सभा इसी जागरूकता और सहभागिता का मंच है। आज आवश्यकता इस बात की है श्रोता साथियों कि हम ग्राम सभा को केवल एक सरकारी बैठक के रूप में न देखें बल्कि इसे जन भागीदारी, पारदर्शिता, जवाबदेही और ग्राम विकास के उत्सव के रूप में देखें।
1: जी हाँ।
0: जब गांव का हर नागरिक कहेगा कि मेरे गांव का विकास केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, मेरी भी जिम्मेदारी है, तब लोकतंत्र की जड़ें और गहरी होंगी। इसलिए कहा जा सकता है कि ग्राम सभा में उठी आवाज केवल एक गांव की आवाज नहीं होती, यह मजबूत लोकतंत्र और सच्चे स्वराज की आवाज होती है। ग्राम सभा में बड़े भागीदारी, तभी मजबूत होगी लोकतंत्र की क्यारी। जागे गांव, बढ़े सहभागिता, यही है लोकतंत्र की सच्ची शक्ति।
1: जी हाँ। तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की, अब देख पा रहे हैं कि समय

0: साथ ही इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपरा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को। नमस्कार।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ई हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन।
0: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
3: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
0: होवे भाई बोनु, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
3: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
0: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
3: होवे आ सब सावधानी रखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
4: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: थारी में पासो लावो चूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
0: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: भाई ने बोनो, आप इकारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े नी कितली शांति मिले है। जीनी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
3: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
2: होवे आज नाना कदम है, ये आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
0: वागड़ रेडियो वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

साथियों, और कितना चाहिए हमें खुश होने के लिए? कितना पाने के बाद हम कहेंगे कि अब बस इतना ही काफी है? कितनी दूर चलने के बाद हम एक पल रुककर अपने सफर को देखेंगे और कब समझेंगे कि जिंदगी सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि जो मिला है उसे महसूस करने का नाम भी है। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि कार्यक्रम सपनों की उड़ान में हम जीवन के उन सवालों पर बात करते हैं जो कभी कभी हमारे मन में चुपचाप बैठते हैं, लेकिन हम उनके जवाब तलाशने के लिए रुकते नहीं हैं। आज कार्यक्रम का हमारी बातचीत का विषय है कि जीवन में पर्याप्त कहना हम कब सीखेंगे। आते इस विषय पर हमारी श्रोता साथियों आपसे ढेर सारी बनी रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआती दस्तूर को निभाते हुए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको विषय से रूबरू कराया था कि आज हमारी बातचीत रहने वाली है कि जीवन में पर्याप्त कहना हम कब सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह सवाल केवल पैसों से जुड़ा हुआ नहीं है, यह हमारी इच्छाओं से जुड़ा है, हमारी अपेक्षाओं से जुड़ा है, हमारी तुलना से जुड़ा है और सबसे बढ़कर हमारे मन की उस आदत से जुड़ा है जो बार बार कहती है थोड़ा और। जी हाँ, थोड़ा और की दौड़ के बारे में बात करें तो बचपन में हम खिलौने से खेलना चाहते थे, खिलौना मिल जाता तो दूसरा चाहिए होता था, फिर स्कूल में अच्छे अंक आते तो उससे बेहतर अंक की इच्छा होती, नौकरी मिलती है तो अच्छी नौकरी चाहिए, घर बनता है तो बड़ा घर चाहिए, मोबाइल आता है तो नया मॉडल चाहिए, एक उपलब्धि मिलती है तो दूसरी उपलब्धि की चिंता शुरू हो जाती है। श्रोता साथियों, सपने देखना गलत नहीं है, आगे बढ़ने की इच्छा रखना भी गलत नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम आगे बढ़ रहे हैं या कभी खत्म न होने वाली दौड़ में भाग रहे हैं। क्योंकि बहुत से बार ये होता है कि इन सारी चीजों की वजह से हम हमारे जिंदगी के असली सुकून को कहीं खो देते हैं। इसलिए कई लोग सोच सकते हैं कि अगर हमने पर्याप्त कहना सीख लिया तो हमारी महत्वाकांक्षाएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर्याप्त का अर्थ यह नहीं है कि आप मेहनत करना बंद कर दें, इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अपने सपनों को छोटा कर दें, इसका अर्थ है अपनी जरूरत और लालच में अंतर समझना, मेहनत और अंधी दौड़ में अंतर समझना, सुविधा और दिखावे में अंतर समझना, और सबसे महत्वपूर्ण यह समझना कि कब किसी चीज के पीछे भागना जरूरी है और कब रुक कर अपने वर्तमान को जीना जरूरी है। जी हाँ, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि सपने बड़े रखिए, लेकिन अपनी खुशी को उन सपनों को पूरा होने तक बंधक मत बना कर रखिए। जी हाँ, आज हमारी जिंदगी में तुलना बढ़ गई है, हम अपने पड़ोसी को देखते हैं, रिश्तेदारों को देखते हैं, दोस्ती को देखते हैं, सोशल मीडिया पर किसी दूसरे की जिंदगी को देखते हैं और फिर अपने जीवन को कम समझने लगते हैं। किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास महंगी गाड़ी है, किसी की नौकरी अच्छी है, किसी का बच्चा किसी परीक्षा में आगे है, किसी का व्यवसाय अच्छा चल रहा है, लेकिन हमें केवल सामने वाले की दिखाई देने वाली जिंदगी दिखाई देती है, उसके संघर्ष, उसकी परेशानियां, उसकी रातों की चिंता नहीं। इसलिए तुलना अक्सर अधूरी जानकारी पर आधारित होती है। सोचने वाली बात है श्रोता साथियों कि दूसरों की जिंदगी की तस्वीर देखकर अपनी जिंदगी का फैसला मत कीजिए, क्योंकि तस्वीर में हमेशा पूरी कहानी दिखाई नहीं देती है। हम सोचते हैं ज्यादा चीजें मतलब ज्यादा खुशी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता।

किसी से कैसे बांटनी है, जरूरत और इच्छा में फर्क कैसे समझना है और मेहनत से मिली छोटी चीज का भी सम्मान करना है, क्योंकि संतोष खरीदा नहीं जा सकता, सिखाया और जिया जाता है। तो साथियों, जैसा कि आज कार्यक्रम में बहुत ही अच्छे विषय पर हमारी बातचीत चल रही है, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही बात करते हैं समय के मामले में भी पर्याप्त शब्द महत्वपूर्ण है। यानी कि हम पैसे बचाने की बात करते हैं, समय बचाने की बात करते हैं, लेकिन हम अक्सर समय को सबसे आसानी से खर्च कर देते हैं। सुबह काम की जल्दी, दिन भर जिम्मेदारियां, शाम को थकान और रात को मोबाइल। फिर अचानक महसूस होता है कि बच्चे बड़े हो गए, माता पिता बूढ़े हो गए, दोस्त दूर हो गए और हम सोचते रह गए कि समय कब निकल गया। इसलिए जीवन में यह भी सीखना जरूरी है कि कब कहना है कि आज काम बहुत है, लेकिन परिवार के लिए यह समय पर्याप्त रूप से जरूरी है। जी हाँ, कई लोग कहते हैं कि जब पैसा जमा हो जाएगा तब घूमेंगे, जब घर बन जाएगा तब आराम करेंगे, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब अपने लिए समय निकालेंगे, जब नौकरी में तरक्की होगी तब खुश रहेंगे। लेकिन जिंदगी हमेशा अगली तारीख का श्रोता साथियों इंतजार नहीं करती, इसलिए आज में ही खुश रहने के छोटे छोटे अवसर खोजिए। परिवार के साथ चाय, बच्चों के साथ कुछ मिनट खेलना, माता पिता से बातचीत करना, दोस्तों से खुलकर हंसना, खेत में बैठकर शाम देखना, और ये छोटी सी चीजें, लेकिन जीवन इन्हीं पलों में बनता है। खुशी को कल के खाते में जमा मत करते रहिए, कुछ खुशी आज भी खर्च कीजिए। जी हाँ दोस्तों, संतोष का मतलब यह नहीं है कि इंसान विकास करना बंद कर दे। किसान अच्छी फसल चाहता है, विद्यार्थी अच्छे अंक चाहता है, व्यवसायी तरक्की चाहता है, युवा अच्छी नौकरी चाहता है, ये सब स्वाभाविक इच्छाएं हैं। संतोष का अर्थ है मेहनत करते हुए भी मन में यह स्वीकार करना कि मेरी कीमत केवल मेरी उपलब्धियों से तय नहीं होती। यदि आज परिणाम अपेक्षा के अनुसार नहीं आया तब भी मैं खुद को असफल इंसान नहीं मानूंगा, मैं कोशिश जारी रखूंगा और यही संतोष है। जी हाँ दोस्तों, प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती। बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, सुबह धीरे धीरे आती है, बारिश अपनी गति से होती है, ऋतुएं अपना समय लेकर बदलती है। प्रकृति हमें बताती है कि हर चीज को तुरंत पाना जरूरी नहीं, हम भी अपने जीवन में धीरे सीख सकते हैं। इसी के साथ अब बात आती है कि क्या कम में खुश रहना संभव है। तो दोस्तों बिल्कुल, कम साधन कम खुशी एक ही बात नहीं है। किसी परिवार के पास बहुत पैसा हो सकता है लेकिन बातचीत न हो, दूसरे परिवार के पास सीमित साधन हो लेकिन शाम को सब साथ बैठकर हंसते हो, तो असली समृद्धि कहाँ है? शायद वहाँ जहाँ मन में एकाग्रता और रिश्तों में अपनापन हो। श्रोता साथियों, आज रात सोने से पहले कागज पर आप 3 बातें अवश्य लिखिएगा। पहली ये कि मेरे पास क्या है, दूसरी कि मैं किस चीज के लिए आभारी हूँ, तीसरी मेरी कौन सी इच्छा वास्तव में जरूरत है और कौन सी केवल तुलना के कारण पैदा हुई है। हो सकता है कि इन 3 सवालों के जवाब आपको अपने जीवन को नए नजरिए से देखने में मदद करें। कहना चाहूंगी दोस्तों एक कविता के माध्यम से कि दौड़ते दौड़ते अगर आप थक जाएं तो कुछ पल ठहर जाना, जो मिला है जीवन में तुमको उसको भी पहचानना। हर मंजिल के आगे मंजिल हो तो सफर खत्म होगा, कभी तो अपने मन से पूछो कि क्या इतना कम होगा। सपने देखो, आगे बढ़ो, मेहनत से मत घबराना, लेकिन जो आज मिला है तुमको उसमें भी सुख ढूंढ पाना। और चाहिए कि शोर में अक्सर मन की आवाज दब जाती है, इतना भी बहुत है कर देने पर कि जिंदगी मुस्कुरा जाती है।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही आपको कहना चाहूंगी कि ये केवल व्यक्तिगत जीवन की बात नहीं है कि हम पर्याप्त कहना सीखें। हमारा समाज भी लगातार अधिक की ओर बढ़ रहा है। अधिक उपभोग, अधिक दिखावा, अधिक प्रतिस्पर्धा, अधिक संसाधनों का इस्तेमाल, लेकिन प्रकृति के संसाधन सीमित हैं। यदि हम केवल लेते रहेंगे और लौटाएंगे नहीं, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या बचेगा? इसलिए पर्याप्त कहना पर्यावरण के लिए भी महत्वपूर्ण है। जितनी जरूरत हो उतना इस्तेमाल करना, भोजन बर्बाद न करना, पानी बचाना, बिजली का ध्यान रखना, अनावश्यक वस्तुएं खरीदने से पहले सोचना, ये छोटे कदम हैं, लेकिन भविष्य के लिए बड़ी जिम्मेदारियां हैं। कभी कभी हम केवल दूसरों को खुश करने के लिए अपनी सीमा से अधिक काम करते रहते हैं। हर किसी की मदद करना चाहते हैं, हर जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं, हर अनुरोध स्वीकार कर लेते हैं और अंत में खुद ही थक जाते हैं। ऐसे समय में अभी मैं इतना ही कर सकता हूँ कहना भी जरूरी है। हर चीज अकेले करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अपनी क्षमता पहचानना और अपनी सीमाओं का सम्मान करना भी आत्मसम्मान है। श्रोता साथियों, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। ऐसी कौन सी चीज है आपके जीवन में जिसके लिए आप लंबे समय से भाग रहे हो, लेकिन शायद आपके पास पहले से ही पर्याप्त है? शायद पैसा, शायद सामान, शायद लोगों की स्वीकृति, शायद दूसरों से आगे निकलने की इच्छा, या शायद हर किसी को खुश करने की कोशिश। आज उस एक चीज को पहचानिए और खुद से कहिए कि मैं अपनी मेहनत जारी रखूंगा, लेकिन अपनी शांति की कीमत पर नहीं। जी हाँ दोस्तों, जीवन हमें हर दिन कुछ न कुछ देता है, लेकिन हमारी नजर अक्सर उस चीज पर रहती है जो अभी हमारे पास नहीं है। इसी कारण कई बार हमारे हाथ भरे होते हैं, फिर भी मन खाली महसूस करता है। हमें अपनी इच्छाओं को खत्म नहीं करना है, हमें बस उनके बीच अपनी शांति के लिए जगह बनानी है। आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन हर कदम पर यह देखना भी जरूरी है कि हम क्या पीछे छोड़ते जा रहे हैं। यदि अधिक पैसा कमाने के लिए परिवार का समय खो गया, तो क्या वह लाभ पूरा है? यदि बड़ी उपलब्धि पाने के लिए स्वास्थ्य खो गया, तो क्या वह सफलता पूरी है? यदि दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपना सुकून खो दिया, तो क्या वह जिंदगी सच में हमारी रही है? शायद इसलिए पर्याप्त शब्द हमारे जीवन में एक सीमा नहीं, बल्कि एक समझ बनकर आना चाहिए। जी हाँ, जीवन में इतना जरूरी चाहिए कि जरूरतें पूरी हो जाएं, लेकिन इतना नहीं कि इच्छाएं कभी खत्म नहीं हों। इतना जरूरी कमाएं कि घर चले, लेकिन इतना नहीं कि घर वालों के लिए समय ही ना बचे। इतना जरूर आगे बढ़िए कि अपने सपनों पर गर्व हो, लेकिन इतना नहीं कि रास्ते में खुद को ही पीछे छोड़ दें। और कभी किसी शांत शाम अपने जीवन को देखकर अगर दिल से आवाज आए कि मेरे पास सब कुछ नहीं, लेकिन मेरे पास बहुत कुछ है, तो ये पल को पहचानिए। शायद यही वह क्षण है जब इंसान पहली बार समझता है कि खुश रहने के लिए जिंदगी में सब कुछ होना जरूरी नहीं, जो है उसे पूरे मन से जीना है। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ अब कार्यक्रम सपनों की उड़ान से मैं विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि आज कार्यक्रम में होने वाली बातचीत आपको अवश्य पसंद आई होगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वाग रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हहमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagthara.org। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारशर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी तक ही करो। थोड़ू सू व्यायाम ने तात्काली नी जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तक ही दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपना वंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है आज के समय में सादगी के महत्व को लेकर।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से कि आज का समय चमक दमक का समय है। कपड़े कैसे हैं, घर कितना बड़ा है, मोबाइल कौन सा है, गाड़ी कितनी महंगी है, सोशल मीडिया पर कितने लोग हमें देखते हैं और कई बार हमारी पहचान इन्हीं चीजों से तय होने लगती है। लेकिन ऐसे दौर में एक सवाल सामने खड़ा होता है, क्या इंसान की असली कीमत उसके पहनावे और दिखावे से तय होती है या उसके व्यवहार और विचार से? आज के इस कार्यक्रम में हम इस विषय पर विस्तार से ढेर सारी बातें जानेंगे कि आज के समय में सादगी की कीमत क्या है और उसका क्या महत्व है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वाग रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि श्रोता साथियों गीत से पहले विषय से तो रूबरू करा ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं आज के समय में सादगी की कीमत को लेकर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि आज का समय बहुत तेजी से बदल रहा है। हमारे आसपास की जो दुनिया है श्रोता साथियों, वो पहले से ज्यादा आधुनिक हो गई है। मोबाइल फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, बड़ी बड़ी गाड़ियां, महंगे कपड़े, नए नए सामान और दिखावे की जिंदगी आज के जीवन का हिस्सा बन गई है। अंजलि जी, हम देखते हैं कि लोग अपनी जिंदगी को दूसरों से बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं। कई बार श्रोता साथियों, हम वह चीज भी खरीदना चाहते हैं जिसकी हमें वास्तव में जरूरत नहीं होती है, केवल इसलिए क्योंकि दूसरे लोगों के पास वह चीज होती है। ऐसे समय में श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि सादगी का महत्व है वो और भी बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल,
0: सादगी का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी जरूरतों को छोड़ दें या आधुनिक दुनिया से दूर हो जाएं। सादगी का सही अर्थ तो श्रोता साथियों यह है कि जितना जरूरी है उतना ही हमें रखना चाहिए, बिना जरूरत के दिखावा न करना और अपने जीवन में अनावश्यक भागदौड़ से बचना।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि सादगी का जो अर्थ है वो हमारे जीवन में अभी के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जैसा कि आपने भी कहा कि बहुत से लोग दिखावे के चक्कर में बहुत सारी ऐसी चीजें कर देते हैं जो उनके जीवन में आगे चलकर नुकसानदेह हो सकती है।
0: बिल्कुल,
1: सादगी का मतलब श्रोता साथियों गरीबी नहीं है, और न ही सादगी का अर्थ यह है कि इंसान अपने जीवन की जरूरतों और खुशियों से दूर हो जाए। सादगी का अर्थ है जीवन में अनावश्यक दिखावे से बचना, अपनी जरूरतों को समझना, सहज व संतुलित जीवन जीना।
0: जी हाँ।
1: एक व्यक्ति बहुत संपन्न होकर भी मनीषा सादा जीवन जी सकता है, और एक व्यक्ति कम संसाधनों में रहते हुए भी दिखावे की दौड़ में शामिल हो सकता है। सादगी हमारे कपड़ों तक सीमित नहीं है, सादगी हमारे बोलने के तरीके में, व्यवहार में, विचार में, रहन सहन में, खर्च करने की आदत में और दूसरों के प्रति हमारे दृष्टिकोण में दिखाई देती है।
0: बिल्कुल,
1: जो व्यक्ति अपनी बात घमंड के कहता है, जो दूसरों का सम्मान करता है, जो अपनी सफलता का दिखावा नहीं करता, जो जरूरत के अनुसार जीवन जीता है, उसके जीवन में सादगी दिखाई देती है। आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं श्रोता साथियों, जहां लोगों के पास पहले से ज्यादा सुविधा है, लेकिन मन की शांति कम होती जा रही है। मोबाइल और सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगी को बहुत बदल दिया है। पहले लोग मनीषा अपने परिवार और समाज के लिए जीते थे, लेकिन आज कई लोग दूसरों को दिखाने के लिए जीने लगे हैं।
0: बिल्कुल,
1: किसी को नया फोन खरीदना है तो उसकी तस्वीर, किसी ने महंगे कपड़े पहने हैं तो उसकी तस्वीर, कहीं घूमने गए हैं तो वहां की तस्वीर, खाना खाया तो तस्वीर। तस्वीर साझा करना श्रोता साथियों गलत नहीं है, लेकिन जब हमारा जीवन दूसरों को प्रभावित करने के लिए जिया जाने लगे तब समस्या शुरू होती है। कई लोग अपनी आर्थिक स्थिति से ज्यादा खर्च केवल इसलिए कर देते हैं क्योंकि उन्हें समाज में पीछे नहीं दिखना होता। शादी ब्याह में जरूरत से ज्यादा खर्च, महंगे कपड़े, सजावट, बड़े आयोजन, दिखावे की प्रतियोगिता कई परिवार पर आर्थिक बोझ डाल देती है।
0: जी हाँ।
1: कभी कभी लोग कर्ज लेकर भी केवल इसलिए खर्च कर देते हैं ताकि समाज में उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे, लेकिन मनीषा सवाल यह है कि क्या प्रतिष्ठा खर्च करने से मिलती है या फिर अच्छे व्यवहार और अच्छे कर्म से? सच्चाई यह है कि दिखावा कुछ समय के लिए लोगों का ध्यान खींच सकता है।
0: जी हाँ।
1: लेकिन सादगी लंबे समय तक लोगों के दिलों में जगह बनाती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथी को कहना चाहेंगी कि सादा जीवन इंसान को कहीं परेशानियों से बचा सकता है। सादगी हमारे खर्च को नियंत्रित करती है, मन को शांत रखती है, रिश्तों को मजबूत बनाती है और साथ ही श्रोता साथियों हमें अपनी असली जरूरतों को समझने में मदद करती है।
1: बिल्कुल।
0: हम देखते हैं श्रोता साथियों कि सादगी हमारे जीवन जीने का एक तरीका है। सादा व्यक्ति अपनी खुशी केवल महंगी चीजों में नहीं ढूंढता है, बल्कि अंजलि जी हम देखते हैं कि वह छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढने लगता है। सादगी कपड़ों से लेकर बोल चाल, खान पान, रहन सहन और व्यवहार तक दिखाई दे सकती है। अगर श्रोता साथियों कोई व्यक्ति साफ सुथरे और सामान्य कपड़े पहनता है, अपनी जरूरत के अनुसार सामान खरीदता है, भोजन की बर्बादी नहीं करता है, दूसरों को दिखाने के लिए खर्च नहीं करता है, तो श्रोता साथियों अपने व्यवहार पर वह घमंड नहीं करता है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि वही सादगी उस इंसान के अंदर दिखाई देती है।
1: बिल्कुल। बिल्कुल मनीषा, यही अब बात आती है सादगी और हमारी आर्थिक स्थिति की। श्रोता साथियों, सादगी का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें अपने खर्च पर नियंत्रण करना सिखाती है। आज बाजार में हर दिन नई चीजें आती हैं। विज्ञापन हमें यह महसूस कराते हैं कि अगर हमारे पास कोई नई वस्तु नहीं है तो शायद हम दूसरों से पीछे हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर इच्छा जरूरत नहीं होती। जरूरत और इच्छा में अंतर समझना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए, परिवार के लिए अच्छा भोजन जरूरी है, पढ़ाई बच्चों के लिए पढ़ाई जरूरी है, स्वास्थ्य पर खर्च जरूरी है, लेकिन केवल लोगों को प्रभावित करने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च करना समझदारी नहीं है। सादा जीवन हमें सिखाता है कि अपनी आय के अनुसार खर्च करें और भविष्य के लिए बचत भी रखें। गांवों और कस्बों में रहने वाले परिवार के लिए बात और भी महत्वपूर्ण है। कई परिवार सीमित आय में घर चलाते हैं। अगर हम दिखावे के पीछे खर्च करेंगे तो शिक्षा, स्वास्थ्य और जरूरत के लिए परेशान हो सकते हैं। सादगी हमें कहती है कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ। यह केवल एक कहावत नहीं है मनीषा, बल्कि आर्थिक समझदारी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश भी है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं। तो ये बातें हमारी आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी, लेकिन क्यों ना साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हम सादगी को लेकर ढेर सारी बातें जान रहे थे, यही श्रोता साथियों, आज बहुत से लोग बाहरी रूप से खुश दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से परेशान होते हैं। दिखावे की जिंदगी में हमेशा तुलना रहती है, उसके पास यह है, मेरे पास क्यों नहीं है, उसका घर बड़ा है, उसकी गाड़ी नहीं है, उसके कपड़े महंगे हैं, उसके सोशल मीडिया पर ज्यादा लोग हैं। तुलना का यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति सादगी को अपनाता है वह अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी से कम तुलना करता है। वह अपने पास मौजूद चीजों की कीमत समझता है। सादगी हमें संतोष का महत्व सिखाती है। संतोष का मतलब यह नहीं मनीषा कि हम आगे बढ़ने की कोशिश ही छोड़ दें, इसका मतलब है कि हम मेहनत और प्रगति जरूर करें लेकिन अपनी खुशियों को केवल वस्तुओं से न जोड़ें। एक छोटा सा घर, खुशहाल परिवार और आपसी प्रेम कई बार महंगी चीजों से ज्यादा बड़ी दौलत होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: हमारे ग्रामीण और आदिवासी समाज में आज भी सादगी के अनेक सुंदर परंपराएं हमें देखने को मिलती है। लोग सीमित संसाधन में भी मिलजुल कर जीवन जीते हैं, सुख दुख में साथ खड़े होते हैं और रिश्तों को महत्व देते हैं। यह हमारी सामाजिक ताकत है। कहना चाहेंगे साथियों कि रिश्ते दिखावे से नहीं बल्कि व्यवहार से मजबूत होते हैं।
1: जी हाँ।
0: एक व्यक्ति कितना भी धनवान क्यों न हो, अगर उसके व्यवहार में घमंड है तो लोग उससे दूरी बना सकते हैं। वहीं दूसरी ओर एक साधारण व्यक्ति अगर विनम्र है, दूसरों की मदद करता है और सम्मान से बात करता है तो लोग उसे हमेशा याद रखते हैं। सादगी हमें विनम्र बनाती है। जब हम अपने आप को दूसरों से बड़ा समझना छोड़ देते हैं तब हमारे रिश्ते बेहतर बनते हैं।
1: जी हाँ।
0: घर में भी बच्चों को यही सीख देने की जरूरत है कि अगर बच्चों को केवल महंगी चीजों की आदत डाल दी जाए तो वे जीवन के वास्तविक मूल्यों को भूल सकते हैं। बच्चों को सिखाना चाहिए कि हर चीज खरीदना जरूरी नहीं है, पुरानी वस्तुओं का उपयोग करना गलत नहीं है, जरूरतमंद की मदद करना बड़ी बात है। किसी व्यक्ति की कीमत उसके कपड़ों से नहीं तय होती है, विनम्रता सम्मान सबसे बड़ी चीज होती है। आज बच्चों को सादगी और संस्कार देना हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है अगर उनमें सादगी, धैर्य, विनम्रता ऐसे गुण नहीं होंगे तो हम देखेंगे कि हमारे जो व्यवहारिक चीजें होती हैं वो भी सही तरीके से पूरी नहीं हो पाएंगी। इसलिए बच्चों को श्रोता साथियों ऐसे संस्कार दें जो आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आधुनिक समाज में आर्थिक विकास के साथ उपभोग की प्रवृत्ति है वो भी तेजी से बढ़ रही है। बाजार ने हमारी आवश्यकताओं को पहचानने के साथ साथ श्रोता साथियों आवश्यकताएं वो पैदा करना भी शुरू कर दिया है। विज्ञापन हमें बताते हैं कि कौन सा कपड़ा खरीदना चाहिए, कौन सा फोन हमें खरीदना चाहिए, कौन सी कार खरीदनी चाहिए और किस प्रकार हमें अपने जीवन में खुश रहने के लिए किस प्रकार घर खरीदना चाहिए। श्रोता साथियों, सोशल मीडिया ने इस प्रवृत्ति को और अधिक प्रभावशाली बना दिया है। लोग अपने जीवन को सुंदर और आकर्षक हिस्से के सामने लाने के लिए प्रस्तुत करते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि महंगे कपड़े, घूमने की तस्वीरें, शानदार भोजन, नई कार, बड़े घर और महंगी वस्तुओं का प्रदर्शन कई बार लोग समाज में करते हैं। श्रोता साथियों, इससे हम देखते हैं कि तुलना की भावना पैदा होती है। व्यक्ति सोचने लगता है कि दूसरे उससे अधिक खुश हैं, सफल हैं और समृद्ध हैं। परिणाम स्वरूप अंजलि जी, हम देखते हैं कि वह अपने जीवन में वास्तविक आवश्यकताओं से अधिक खर्च करने लगता है। कई बार श्रोता साथियों वह केवल दूसरों की नकल करने के लिए ऐसी वस्तुएं खरीदता है जिससे उसे वास्तव में जरूरत नहीं होती है। यही सादगी श्रोता साथियों हमारे सामने एक महत्वपूर्ण विकल्प बन जाती है। हमें याद रखना चाहिए श्रोता साथियों कि हमें दूसरों के जैसा बनने का प्रयास नहीं करना है। हम अपनी आवश्यकताओं को वहीं तक पूरा करें जहां तक हमें खुशी मिलती है। अगर हम अंजलि जी किसी अनावश्यक वस्तु को खरीद कर ले आते हैं और वह हमारे कुछ काम के नहीं आती है तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि इससे हमारा मन ही वो अशांत हो जाता है। इसलिए श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि जिस वस्तु की जरूरत है आपको वही चीजें आप खरीदिए।
0: बिल्कुल मनीषा, यही अब बात आती है कि सादगी का मतलब पिछड़ापन नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि आधुनिक बनने के लिए महंगी चीजें रखना जरूरी है लेकिन यह सोच सही नहीं है। आधुनिकता का संबंध केवल कपड़ों और वस्तुओं से नहीं होता, असली आधुनिकता अच्छे

0: विचारों में होती है। हम नई तकनीक का उपयोग करें, शिक्षा प्राप्त करें, आगे बढ़े, नए अवसरों को अपनाएं, यह सब जरूरी है, लेकिन इसके साथ हमें अपनी जड़ों और जीवन मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए। हमारे गाँव में आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हैं, लेकिन उनका जीवन सरल है। वे मोबाइल भी चलाते हैं, नई जानकारी भी लेते हैं, खेती में नई तकनीकें भी अपनाते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा भी देते हैं, लेकिन आवश्यक दिखावे से दूर रहते हैं। यही संतुलन जीवन को बेहतर बनाता है। सादगी श्रोता साथियों हमें पीछे नहीं ले जाती, बल्कि समझदारी के साथ आगे बढ़ना सिखाती है।
1: जी हाँ।
0: आज सोशल मीडिया हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इसके माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करते हैं, लोगों से जुड़ते हैं और अपनी प्रतिभा दुनिया तक पहुंचाते हैं, लेकिन इसके साथ एक समस्या भी बढ़ती है, दिखावे की संस्कृति। कई बार लोग सोशल मीडिया पर अनेक अपनी जिंदगी का सुंदर हिस्सा दिखाते हैं। केवल दिखावे से लगता है, देखने से लगता है कि व्यक्ति जो है वो दूसरों की जिंदगी से बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है, लेकिन श्रोता साथियों देखने से ये मालूम होना जरूरी नहीं है, उसके अंदर क्या असंतोष है, क्या कैसे तुलना है, वो हमें पता ही नहीं चलता। हमें समझना होगा कि स्क्रीन पर दिखाई देने वाली हर चीज पूरी सच्चाई नहीं होती। इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग करें, लेकिन अपनी जिंदगी की खुशी को लाइक और कमेंट से न जोड़ें। सादगी का मतलब है हम अपनी असली जिंदगी को महत्व दें। परिवार के साथ बैठना, बुजुर्गों से बात करना, बच्चों के साथ समय बिताना, पड़ोसी की मदद करना और समाज के काम आना, ये चीजें किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज के समय की सबसे बड़ी समस्याओं में श्रोता साथियों मानसिक तनाव है। आधुनिक मनुष्य हम देखते हैं कि सुविधाएं अधिक हैं, लेकिन वास्तविक शांति उसे प्राप्त नहीं हो रही है। साथियों अधिक नहीं श्रोता साथियों पर निरंतर प्रतिस्पर्धा, कम दबाव, आर्थिक चिंताएं, सामाजिक तुलनाएं और भविष्य की चिंताएं व्यक्ति को तनावग्रस्त कर देती है। ऐसे में अंजलि जी हम देखते हैं कि सादगी हमारे मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए बहुत जरूरी होती है। जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं तक सीमित रहता है साथियों, तो हम देखते हैं कि उसके जीवन का आर्थिक और मानसिक दबाव भी वो कम होने लगता है। इसलिए श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि हमें अपने जीवन में हमेशा सादगी को अपनाना चाहिए। किसी महंगी वस्तुओं के पीछे भागने के बजाय श्रोता साथियों हम देखते हैं कि अगर हम किसी महंगी वस्तुओं के पीछे भागते हैं या दूसरों लोगों जैसा बनने की कोशिश करते हैं साथियों, तो हम देखते हैं कि इससे हमारा मानसिक तनाव है वो बढ़ता जाता है। इसलिए श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि हमें हमेशा अपनी सादगी में रहना चाहिए, क्योंकि श्रोता साथियों कहा गया है कि व्यक्ति को वर्तमान में जीना सिखाती है सादगी। वह छोटी छोटी चीजें खुशी रखना सिखाती है और साथ ही हम देखते हैं कि हमारे परिवार के साथ हमें समय बिताना चाहिए, प्रकृति का आनंद लेना चाहिए, पुस्तकें पढ़नी चाहिए, अपने मित्रों से बातचीत करनी चाहिए। श्रोता साथियों इससे हम देखते हैं कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य वो ठीक रहता है और हम अपने जीवन में और अधिक सहज महसूस करते हैं।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हम श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें कर रहे हैं, आगे भी निरंतर ये बातें यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों हम बातें कर रहे थे आज के समय में सावधगी की कीमत को लेकर, यहीं अगर अंजलि जी बात करें कि सादगी और आर्थिक स्वतंत्रता की, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि सादगी का सीधा संबंध है वो आर्थिक जीवन से भी जुड़ा हुआ है। आज अनेक लोग अपनी आय से अधिक खर्च करते हैं क्योंकि श्रोता साथियों वे अपनी जीवन शैली को दूसरों के अनुसार बनाए रखना चाहते हैं। महंगे मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े, बड़ी गाड़ियां, भव्य समारोह कई बार श्रोता साथियों आर्थिक दबाव बढ़ा देते हैं। यदि व्यक्ति अपनी वास्तविक आवश्यकताओं को समझकर खर्च करे अंजलि जी, तो हम देखते हैं कि वह बचत कर सकता है और भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा बना सकता है। श्रोता साथियों, सादगी का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा न करे, इसका अर्थ यह है कि वह विवेक पूर्वक तरीके से अपना खर्च है उसको संभाले। उदाहरण के लिए श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के पास पहले से उपयोगी मोबाइल है तो उसे नया मॉडल खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, वो उसी के अनुसार अपना काम चला सकता है। पर अंजलि जी, हम देखते हैं कि दिखावे की प्रवृत्ति में आकर व्यक्ति है वो और आगे बढ़ता जाता है और अपने खर्चों को संभाल नहीं पाता, इससे हम देखते हैं कि आर्थिक दबाव है वो बढ़ता जाता है।
1: बिल्कुल मनीषा, सादगी केवल व्यक्ति के लिए ही नहीं बल्कि प्रकृति के लिए भी जरूरी है। आज हम जरूरत से ज्यादा खरीदते हैं, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और बहुत सी चीजों को जल्दी फेंक भी देते हैं। इससे कचरा बढ़ता है और पर्यावरण का दबाव भी बढ़ता है। अगर हम सादगी अपनाएं तो जरूरत के अनुसार खरीदी करेंगे, अपनी पानी की बचत करेंगे, बिजली का सही उपयोग करेंगे, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करेंगे और पुरानी चीजों का पुनः उपयोग करेंगे। इस प्रकार सादा जीवन पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हम देखते हैं कि हमारे गांव चीजों को बार बार कह सकते हैं कि फेंकने की आदत रहती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी,
1: इसलिए श्रोता साथियों कपड़े, बर्तन, लकड़ी और अन्य वस्तुओं को आसानी से फेंकना नहीं चाहिए। आज हमें आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ इस समझदारी को भी अपनाने की जरूरत है कि कम संसाधनों में बेहतर जीवन जीना भी सादगी की पहचान।

0: हमारे अंदर आएगी, इसलिए श्रोता साथियों मित्र है वो भी हमें सोच समझ कर बनानी चाहिए।
1: बिल्कुल मनीषा, सादगी हमारे जीवन जीने का एक तरीका है। सादा व्यक्ति अपनी खुशी केवल महंगी चीजों में नहीं ढूंढता, वह छोटी छोटी चीजों में भी खुश रहना जानता है। सादगी कपड़ों से लेकर बोलचाल, खान पान, रहन सहन और व्यवहार तक दिखाई दे सकती है। अगर कोई व्यक्ति साफ सुथरे और सामान्य कपड़े पहनता है, अपनी जरूरत के अनुसार सामान खरीदता है, भोजन की बर्बादी नहीं करता, दूसरों को दिखाने के लिए खर्च नहीं करता और अपने व्यवहार में घमंड नहीं करता, तो वह उसका जीवन सादगी से जीता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सादा जीवन जीना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं, तो ये बातें हमारी आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी। लेकिन क्यों ना साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही श्रोता साथियों आपसे बात करना चाहेंगे सादगी और समाज में सम्मान को लेकर। समाज में सम्मान केवल पैसे से नहीं मिलता, सम्मान मिलता है अच्छे व्यवहार से, सच्चाई से, मेहनत से, दूसरों की मदद से और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने से। कई बार मनीषा हम किसी बड़े व्यक्ति से मिलते हैं लेकिन उसका सरल व्यवहार हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करता है।
1: जी हाँ,
0: सादा व्यक्ति आसानी से लोगों से जुड़ता है, उसे अपनी बात कहने के लिए दिखावे की जरूरत नहीं होती, उसे काम ही उसकी पहचान बन जाता है। आज के समय में जब लोग अपनी पहचान बनाने के लिए कई तरह के दिखावे करते हैं, ऐसे समय में एक सरल और सच्चा व्यक्ति अलग दिखाई देता है। सादगी कमजोर नहीं बल्कि आत्मविश्वास की निशानी है। जो व्यक्ति अपने आप में विश्वास रखता है उसे हर समय दूसरों को प्रभावित करने की जरूरत नहीं होती। आज के युवा देश और समाज का भविष्य है, उनके सामने जीवन में आगे बढ़ने के अनेक अवसर है लेकिन चुनौतियां भी बहुत है। महंगे फैशन, ब्रांडेड चीजों और सोशल मीडिया की दुनिया में युवाओं के लिए अपनी जरूरत को समझना जरूरी है। युवा अपनी मेहनत और प्रतिभा से पहचान बनाए, महंगे कपड़ों से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अच्छा व्यक्तित्व बनाए। महंगे मोबाइल से ज्यादा जरूरी है उसका सही उपयोग, दिखावे से ज्यादा जरूरी है आत्मविश्वास और दूसरों की नकल करने से ज्यादा जरूरी है अपनी मेहनत पहचानना। अगर युवा अपनी आय और जरूरत के अनुसार जीवन जीना सीखेंगे तो वे भविष्य में आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे। बचत की आदत, मेहनत की आदत और सादा जीवन, ये तीनों बातें जीवन को स्थिर और मजबूत बना सकती हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज युवा सबसे अधिक सामाजिक और डिजिटल प्रभावों का सामना कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली जीवन शैली उन्हें जल्दी प्रभावित कर देती है। श्रोता साथियों, वे प्रसिद्ध लोगों की जीवन शैली को आदर्श मान लेते हैं और उसी प्रकार अपने जीवन जीने की इच्छा करने लगते हैं। युवाओं के लिए श्रोता साथियों, सादगी का अर्थ महत्वाकांक्षाओं को समाप्त करना नहीं है बल्कि इसका अर्थ यह है कि वे अपनी महत्वाकांक्षाओं को सही दिशा में ले जाएं। उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त करनी चाहिए साथियों, लेकिन सफलता का अर्थ केवल अधिक धन और प्रसिद्धि से हमें नहीं जोड़ना चाहिए। शिक्षा, ज्ञान, चरित्र, स्वास्थ्य, रचनात्मक और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी हमारी सफलता का महत्वपूर्ण आधार हो सकती है। यदि अंजलि जी युवा कम उम्र में बचत, संयम, समय का सही उपयोग और आवश्यकताओं को पहचानना सीख ले साथियों, तो हम देखते हैं कि वे भविष्य में अधिक संतुलित और आत्मनिर्भर बन सकते हैं।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि हम अपने जीवन में सादगी को कैसे अपनाएं, ये सवाल आ ही रहा होगा। सादगी केवल सुनने की चीज नहीं है, इसे जीवन में अपनाना भी जरूरी है। हम कुछ छोटे कदम उठा सकते हैं जैसे कि जरूरत और इच्छा में अंतर समझें। हर चीज खरीदी नहीं जा सकती और हर चीज को खरीदना जरूरी भी नहीं है। दूसरों की देखा देखी में खर्च न करें। शादी, त्योहार और अन्य अवसरों पर अपनी क्षमता के अनुसार खर्च करें। वस्तुओं से ज्यादा रिश्तों और मूल्यों की कीमत समझनी चाहिए। हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, इसलिए तुलना नहीं करनी है। सरल और विनम्र बने रहना है, यानी कि अच्छी भाषा और अच्छा व्यवहार हर व्यक्ति को प्रिय बनाता है। पानी, बिजली और अन्य संसाधनों का सोच समझ कर उपयोग करें, क्योंकि श्रोता साथियों, आज की बचत भविष्य में कठिन समय में सहारा बन सकती है। आज की दुनिया तेजी से बदल रही है, बाजार बदल रहा है, फैशन बदल रही है, तकनीक बदल रही है और जीवन जीने के तरीके भी बदल रहे हैं। लेकिन कुछ मूल्य ऐसे हैं जिनकी कीमत कभी नहीं होती। सादगी उन्हीं मूल्यों में से एक है। सादगी हमें यह नहीं सिखाती मनीषा कि हम सपने देखना छोड़ दें, बल्कि सादगी कहती है कि अपनी जरूरत के जो सपने हैं उन्हें हमें जरूर देखना चाहिए। आगे जरूर बढ़े, मेहनत जरूर करें, सफलता जरूर पाएं, लेकिन सफलता मिलने के बाद अपने भीतर के इंसान को मत खोइए। ऐसा जीवन जिए जिसमें सुविधाएं हो लेकिन फिजूल खर्ची न हो, तरक्की हो लेकिन घमंड न हो, सफलता हो लेकिन दिखावा न हो और आधुनिकता हो लेकिन अपने संस्कारों से दूरी न हो। आज जब हम हर तरफ चमक दमक की दौड़ देख रहे हैं, तब सादगी को रुक कर सोचने का अवसर हमें ये सारी चीजें देती है। वास्तविक खुशी शायद श्रोता साथियों बहुत महंगी चीजों में नहीं बल्कि उन छोटे छोटे पलों में छिपी होती है, जैसे कि परिवार के साथ बैठकर भोजन करना, किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करना, मेहनत की कमाई कमाई से संतोष पाना, बिना किसी दिखावे के अपने जीवन को खुशी से जीना। याद रखिए कि दिखावा लोगों की नजर को कुछ समय के लिए आकर्षित करता है, लेकिन सादगी इंसान के व्यवहार को हमेशा के लिए यादगार बना देती है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पता हम बता दें।
0: बिल्कुल, तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3270001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
1: इसी के साथ दोस्तों आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल को
2: नमस्कार।
1: साथ ही श्रोता साथियों आप सभी को छोड़े चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ में।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त और इस कार्यक्रम की होस्ट कशिश पारशर। स्वागत है साथियों आप सभी का हमारे आज के इस कार्यक्रम और आपके पसंदीदा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि फरमाइशों का सिलसिला कार्यक्रम के माध्यम से हमारा आपके साथ रोजाना बना रहता है, सोमवार से शनिवार सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। और इसी बीच दोस्तों आप अपनी फरमाइश गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप एसएमएस करते हैं। श्रोता साथियों, अगर आप हमारे कार्यक्रम में नए हैं, आप भी अपने फरमाइश के गीत सुनना चाहते हैं, हम तक पहुंचाना चाहते हैं, ज़रूर पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। आपको करना कुछ नहीं है साथियों, आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर एसएमएस करना है, लिखना है फिल्म का नाम, गीत के बोल, आप कहां से इस फरमाइश को सुनना चाह रहे हैं वहां का आपको नाम लिखना है, साथ ही फरमाइश कर्ताओं के नाम लिखकर भेज देना है व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9414082643। नंबर मैं फिर से बताना चाहूँगी क्योंकि इसी नंबर के जरिए आप अपने राय सुझाव और फरमाइश के गीत हम तक पहुँचा सकते हैं। हमारा नंबर है 9414082643 पर। तो श्रोता साथियों, हमें इंतज़ार रहेगा आपके फरमाइश गीतों का। अब जैसा कि कार्यक्रम में फरमाइशों का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो मैं बढ़ना चाहूंगी हमारी पहली फरमाइश की ओर। साथियों, पहली फरमाइश आई है बल्केश्वर से, कॉलोनी आगरा से। फिल्म का नाम है आशिकी। गीत के बोल है बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। इस गीत को आवाज दी है कुमार सानू जी ने। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं आगरा से सरिता चौरसिया, सूरज चौरसिया, सुमित चौरसिया, वीर अभी चौरसिया जी। कानपुर से सुजाता चौरसिया, पंकज जी। इसी बीच हमारे और भी श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। आपको नाम बताना चाहूंगी, श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं रोहिदास चौक पंडापुर सिटी से, प्रशांत सिंधे, सुनीता सिंधे, यशा सिंधे, शिंदे, कृष्णा घोड़के जी। और भी हमारे श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं, जुड़ना चाह रहे हैं इंदौर से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी, लड्डू देविका चौधरी। और भी हमारे दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं इसी गीत के साथ, आपको नाम बताना चाहेंगे। अनुरोध करता है राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गुणाने, अर्चना ताई गुणाने, प्रेम कुमारी प्रसिद्धि, रामन शंडे, प्रतिभा गुणाने जी। तो आइए साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों, फरमाइशों का सिलसिला कार्यक्रम के माध्यम से शुरू हो चुका है, इसी बीच में बढ़ना चाहूँगी फिर से हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। साथियों, अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है। फिल्म का नाम है सिर्फ तुम, गीत के बोल हैं एक मुलाकात जरूरी है सनम। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे अमरावती से सिद्धार्थ गुणाने, अर्चनाताई गुणाने, प्रसिद्धि हीरामन शिंदे, प्रतिभा गुणाने जी, और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। बागपत यूपी से हैं आसिफ अली खान, मोमिन अनास, मुस्कान सादिक अली खान, सारिक अली खान। मोहाली पंजाब से हैं बबल मल्होत्रा, प्रकाश मल्होत्रा। बागपत यूपी से जुड़ना चाह रहे हैं जगमोहन सिंह प्रजापत, मुनेश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, भुवनेश्वरी देवी, सुधीर नूतन, रामनाथ कश्यप। और दिल्ली से हैं रामनाथ प्रजापति जी, सुमन देवी जी। नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नितिन शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन जी शाह, राजेंद्र शाह, सुषमा कपूर जी। तो आइए श्रोता साथियों, मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं एक मुलाकात जरूरी है सनम। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपकी अपनी दोस्त कशिश पारा शर के साथ में।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था सिर्फ तुम फिल्म का, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, इसी गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। श्रोता साथियों, अगली फरमाइश हमारे बीच आई है, मैं आपको बताना चाहूँगी। फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी, गीत के बोल हैं परदेसी परदेसी जाना नहीं। फरमाइश करता है इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, मैं आपको नाम बताना चाहूँगी। रघुवीर नगर से हैं दिलावर खान, हसीना बानो नायाब लड्डू और अलीज़ा नायाब जी इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं। और भी श्रोता साथी जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाहते हैं, श्रोता साथी हैं जो कि जुड़ रहे हैं मजनू का टिल्ला से, कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, और भी हमारे श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन कर रहे हैं। आपको नाम बताना चाहूँगी। श्रोता साथी जुड़ रहे हैं मेरठ से अनिल जैन, सैम जैन, मुस्कान मास्टर जी, वीएम जैन, आदि जैन, अंश जैन, भव्य जैन, अंशिका जैन, सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो, रोजिकेटो, पल डिकेस्टो, विलिस डिकेस्टो जी। तो आइए श्रोता साथियों, मनोरंजन कर लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं परदेसी परदेसी जाना नहीं। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रद्धा साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगले फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश आई है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है श्रद्धा साथियों तेजाब, गीत के बोल हैं कह दो कि तुम मेरी हो वरना। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेश्वरी ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी जी। खंडवा से हैं अब्दुल गफार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर, जियालोर अब्दुल रहमान डावर, कादर डावर, राजेंद्र कटारे। छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी जी। बोड़खेड़ा पित्रामल से हैं विनोद मोहन, देहा जैन, नेहा जैन, दीपक मयंक मोड़त, चेतन नाटा, दिलीप सिंह पंवार, दीक्षा कुश मोड़त जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे जमशेदपुर से हरिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, तमन्ना भाटिया जी। रतलाम एमपी से जुड़ रहे हैं जगदीश धाकर नायमा, रंजुभाई धाकर, युवराज सिंह ठाकुर, शिवांगी धाकर जी। अजित कसाना मैयादी भी ऋतिक आदित्य कसाना लदावली जिला मुरादाबाद से हैं। तो आइए श्रोता साथियों मनोरंजन कर लेते हैं साथियों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं कह दो कि तुम मेरी हो वरना। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश आई है पलारी छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों। आपको बताना चाहूंगी, गीत के बोल हैं, ए यार सुन यारी तेरी। फिल्म का नाम है सुहाग। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पुनाराम देवांगन, कृष्णा देवांगन जी। इसी बीच हमारे साथी जुड़ना चाह रहे हैं और भी, जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं, तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवंत श्रीवास, कृणाल श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक श्रीवास, आयुषी श्रीवास। छत्तीसगढ़ से मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमू सोनू, मानस राज। खुपटी महाराष्ट्र से है बंडू लोहार पोपलगढ़, चंद्रकला पोपलगढ़, देवीदास पोपलगढ़ जी। और भी साथी हैं, भोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार। सूर्यनगर जोधपुर राजस्थान से हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बीबी गर्वी जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, ए यार सुन यारी तेरी। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

0: क्या हुआ?
1: चल तू चला।
0: मैं?
1: अरे चला ना। अरे मैं हूं ना तेरे साथ।
0: अमित
1: क्लच दबा।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारा बीच आया है खेल बाजार पानीपत से। फिल्म का नाम है ये वादा रहा। गीत के बोल है श्रोता साथियों, तू तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्मी मल्होत्रा, लड़कुल मल्होत्रा, नानक चंद्र मल्होत्रा, रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुगू भाविका सिक्का, पोटा कला दुर्ग से संजय साहू, सुधा साहू, शशांक साहू, सीमा साहू, चोकलाटी बुलंदशहर से हैं मोहम्मद सिद्धवासी, निगत प्रवीण अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अब्बान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण। नेहरू चौक पैटर्न से सुरेश यादव, अनिता यादव, आरती पूजा, प्रसाद यादव, सुनल यादव, सिया यादव, जलाना शोर से सोमनाथ यादव, गीता ओम, सुभाष चंद्र, एकनाथ यादव, संगीता यादव। कलानोर से हैं नरेंद्र शर्मा।

किरण नितिन, मयंक शर्मा। और भी साथी जुड़ना चाह रहे, यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मणराव लोखंडे, राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल मनवर, चेतन मनवर, रोशनी मनवर, प्रियांशी जी। सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रिजी केस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो जी। कुमार हेड़ा से जुड़ना चाह रहे, सैयद मसूर, साइना अक्सा, नाजमा आफिया, इब्राहिम सद्दाम जी। और भी दोस्त जुड़ रहे हैं, शाहिद अली, जाहिद अली और शाजिद अली जी। उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, आजल सीमा, मानवी तनवी, लक्ष सोहिनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह जी। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, शिवन्या गोस्वामी, अनु गोस्वामी जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल है ये वादा रहा, तब तक आप बने रहिएगा, कार्यक्रम आपकी फरमाइश में है।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। साथियों, अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है उमाली महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों रब ने बना दी जोड़ी। गीत के बोल हैं होले होले हो जाएगा प्यार। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं अनूप कुमार उद्धव पाटिल जी। इसी बीच और भी श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ मनोरंजन कर रहे हैं। बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भव्या कुमारी, निवेश कुमार, नियति कुमारी। राजस्थान से हैं शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा खटक। जफराबाद से सुधाकर राजे जादव, प्रशांत राजे जादव, जगुताई राजे जादव, प्रणय देशमुख, सर्वित देशमुख, हर्षिता सानवी और प्रणय देशमुख जी और समस्त जादव और देशमुख परिवार सदस्यगण। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं होले होले हो जाएगा प्यार। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

नमस्कार श्रोता साथियों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाक रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों, कार्यक्रम का सिलसिला बना हुआ था सुबह 11 बजे से, जिसे आप सुन पा रहे थे प्रस्तुतकर्ता कशिश पाराशर के साथ में। अब आप इसे सुन पाएंगे मेरे साथ में, यानी कि आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में। साथियों, इस सिलसिले को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है यतला महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है पारस। गीत के बोल हैं, तेरे मेरे होठों के दो फूल प्यारे। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने और मुकेश जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है शंकरलाल जयसवाल, गणेशलाल जयसवाल, सुप्रसाद जयसवाल, अपनव जयसवाल, दुर्गेश्वरी जयसवाल, राखी जयसवाल और तृप्ति जी जयसवाल। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं उत्तराखंड से, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रहे मेरा आप जहां जी। इस गीत के अनुरोध करता है छत्तीसगढ़ से फणेश कुमार चंदन, साविता देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हेमांश कुमार चंदन, सोगा धमतरी जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाग रेडियो 90.8 FM पर।

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है चूरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से। फिल्म का नाम है मधुमती। गीत की बोल ही बिछुआ बिछुआ पापी चढ़ गयो। इस गीत की फरमाइश करता है लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, माला ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानुषानु बब्बन मीनू, काना हरिप्रिया जी ठाकुर। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं दुरापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इजदार, नरगिस जी खातून। इस गीत के अनुरोध करता है छत्तीसगढ़ से प्रेम साई, सोमवार साई, भगत हेमंत जी, खोलावन सिंह। इसी बीच जुड़ना चाह रहे गंजुड़वारा से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान नाज, नवाजिक शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी जी और राधा नामदेव जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। तब तक आपसे बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाकड़ रेडियो 90.8 FM।

0: आई श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है सनम बेवफा, गीत की बोल ही वो हरे दुपट्टे वाली। इस गीत की फरमाइश करता है गुणवा श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, बीबी जी श्रीवास, बीबी आयुषी श्रीवास। बेलतारा छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमे सोमो और मानस सिंह राज। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं बरेली से मोहम्मद यासीन अंसारी, शशिम अंसारी, नरसिंह अंसारी, शमा अंसारी, महिनूर जी अंसारी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते ही फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है सनम बेवफा, गीत के बोल ही ओ हरे दुपट्टे वाली। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागट रेडियो 90.8 FM पर।
1: रुक जा, ओ हरे दुपट्टे वाली।

श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है धनुरी तेरी वाला सीम। फिल्म का नाम है सर, गीत के बोल ही सुन सुन बरसात की धुन। इस गीत को आवाज दी है कुमार सोनू जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है निसार सलमानी, नुसार सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं चचेड़ी छत्तीसगढ़ से, कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ जी मरावी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी जी विश्वकर्मा। इस गीत के अनुरोध करता है छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा, प्रसाद राजेंद्र जी वर्मा। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं आकोट से विनायक भिंडी, श्रीमती मंगला जी भिंडी, शुभम झरिए, पवन झरिए और सजीव जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है सर, गीत के बोल है सुन सुन बरसात की धुन। इस गीत को आवाज दी कुमार सोनू जी ने। तो आइए साथियों, सुनते हैं श्रोता साथियों की फरमाइश की इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपकी अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए साथियों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है जैन मंदिर वाले गले कुरावली से। फिल्म का नाम है कुर्बान, गीत के बोल हैं ये धरती चांद सितारे। इस गीत को आवाज़ दी है उदित नारायण जी ने और अनुराधा जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है साहिद हुसैन अंसारी, नरसी अंसारी, नूरिन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद फेक जी अंसारी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं सदर बाजार भिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक जी चौहान। इस गीत के अनुरोध करता है अमरावती से सिद्धार्थ गोड़ानी, हीरामन शिंडी और सिद्धार्थ जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति वर्मा, शिवांशी वर्मा। भाटापारा छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा, नोखीलाल जी वर्मा। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है कुर्बान, गीत के बोल ही ये धरती चांद सितारे। इस गीत को आवाज दी है अनुराधा जी ने और उदित नारायण जी ने। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पंडितपुर सिटी से। फिल्म का नाम है आज का अर्जुन, गीत के बोल हैं गोरी है कलैया। इस गीत की फरमाइश करता है प्रशांत सिंधी, सुनीता सिंधी, यशराज सिंधी, ऋषि सिंधी, कृष्णा घुड़के जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। एकता कॉलोनी रोहतक हरियाणा से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट, अंकित जी कांगड़ा। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। डबकी रोड अकोला से शशिला देवी मधुरकर, सदानंद मधुरकर, कुमार गौरव जी मधुरकर। इस गीत के अनुरोध करता है भेड़ शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, अंजलि करवा, बाल प्रसाद करवा, अंजलि जयश्री मेरेत्री, रामनिवास अग्रवाल, धनजी बिट्टू और बीबी गुदलेश जी। इस गीत के अनुरोध करता है नवाशहर पंजाब से गंगदीप थांदी, दीप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बीबी वामिका वानी जी थांदी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं गोरी है कलैया। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने और शब्बीर कुमार जी ने। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को।

आइए साथियों इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है यूपी से। फिल्म का नाम है रंग, गीत के बोल हैं, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। इस गीत की फरमाइश, इस गीत को आवाज़ दी है अलका जी ने और कुमार सोनू जी ने। इस गीत की फरमाइश करता है श्रीमती सरोज चौरासिया, सुरेश चौरासिया, सबोज सलोनी चौरासिया, संजू लल्ला चौरासिया, बाबू शिवा शिवानी चौरासिया, पवन घोड़े और योगेंद्र नायक जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। बिहार से मीरा ज्योति रोहदास बिहार से जुड़ रही हैं, सोनम और अनामिका जी। इस गीत के अनुरोध करता है जलालाबाद वेस्ट से सूरज गगनीजा, पूनम गगनीजा, विशाल प्रिया, दिशा ने निमित आहूजा जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं बुलेंदखंड उत्तर प्रदेश से अभिपाल, जय सिंह पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा जी पाल, विमलेश पाल, दिव्यांशी बदेल और बदेल परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। लाहौरा से जुड़ना चाह रहे हैं डोमेंद्र नेताम, गणेश्वरी नेताम, चंचल नेताम, कमलेश नेताम और माहिर जी नेताम। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं करने जी से मंजू लोखंडी, रामहरी लोखंडी, सुरेश लोखंडी। इस गीत के अनुरोध करता है पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेन नेताम, कुसुम जी नेताम। महाराष्ट्र से जुड़ रही बाबा साहेब कणककर, साकरबाई कणककर, परमेश्वरी रोहिणी, श्रावणेश्वरी और कणककर परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। नरवेल महाराष्ट्र से जुड़ना चाह रहे हैं पीएच निहावकर, निर्मला निहावकर, विशाल निहावकर। मलकापुर महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं नारायण इगले, सोपान ताईडी, आशीष मेहकर जी। कोलगांव से जुड़ना चाह रहे हैं पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन, पांडुरंग जी कुंभार। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास, हेमंत नामदेव, नंदनी नामदेव, नेहा नामदेव, छन्नूलाल श्रीवास, रंजन शाहू जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजु योगिता श्रीवास, रंजन शाहू, हेमंत रामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। इस गीत के अनुरोध करता है भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरविंदर सिंह चावला, बानी जोशी, लोकी जोशी, पायल जोशी, अंकिता जोशी, लक्ष्मी ध्रुव, बेबी वेदई जोशी, बेबी हंसिका जी जोशी। जगदलपुर बस्तर से जुड़ना चाह रही हैं पूनम जी नायडू। खड़वा मध्य प्रदेश से जुड़ना चाह रही हैं अब्दुल गफ्फा डावर जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही तुझे ना देखो तो चैन मुझे आता नहीं है। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाकट रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में। और श्रोता साथियों यह गीत आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

श्रोता साथियों, यह तो थी हमारी आज की सभा। आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को कैसे लगी, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता ही वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज की सभा से जाने की। आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल को इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल और स्वागत करती हूं आपका हमारी आज की सायकालीन सभा में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। साथ ही श्रोता साथियों, बताना चाहूंगी कि स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं। श्रोता साथियों, संध्याकालीन सभा की शुरुआत से पहले आइए जानते हैं पुनः प्रसारित कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सबसे पहले कार्यक्रम हम सुनेंगे भक्ति श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना। अगला कार्यक्रम शुरू होगा आपकी और हमारी आवाज़ यानी कि कार्यक्रम युवाओं की आवाज़। इसे लेकर आएंगे जागृति भट्ट और हमारे रेडियो साथी कशिश पारेषर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे 5:30 पर। इसके बाद हम रुक करेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन की ओर। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारेषर और हमारे रेडियो साथी कशिश पारेषर। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 6 बजे। फिर अगला कार्यक्रम शुरू होगा इसी कड़ी में किसान भाइयों का खेती बाड़ी। इसे लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारेषर। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। दोस्तों, कार्यक्रमों की रूपरेखा में आगे बढ़ते हुए हमारा अगला कार्यक्रम होगा सच्चा स्वराज। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी जागृति भट्ट और हमारी रेडियो साथी अंजलि पारेषर। अगला कार्यक्रम होगा महिलाओं से जुड़ा विशेष कार्यक्रम घूमर। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी अंजलि पारेषर और हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। इसके बाद आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे 8 बजे। दोस्तों, मनोरंजन की होगी पूरी भरमार, तभी आप सुन सकेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत ठीक 8:30 पर। श्रोता साथियों, इन्हीं नगमों के बाद हम रुख करेंगे गजलों की ओर। सुनेंगे कुछ प्यार भरी गजलों को रात्रि 9 से 10 बजे तक। श्रोता साथियों, यह तो थी आज के संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। तो आइए सभा की शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना से।

0: आज के सुविचार।
1: मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या होती है? सोचिए। धन, प्रेम, अहंकार। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता होती है उसके रहस्य। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितने भी प्रबल क्यों ना हो, परंतु उसके रहस्य उसके नाश की चाबी होती है। इसलिए यदि प्रबल रहना है, शक्तिशाली रहना है, समर्थ रहना है, तो अपने रहस्य को किसी को भी ना बताएं, ना मित्र को और ना ही शत्रु को, क्योंकि समय पड़ने पर कब कौन शत्रु हो जाए ऐसा कहना संभव नहीं। विभीषण को रावण के अमृत कुंड का ज्ञात था, इसीलिए प्रभु श्री राम रावण का वध करने में सफल हो सके। इसलिए उचित यही है कि आप अपने रहस्य को स्वयं तक ही सीमित रखें। मनुष्य जीवन की परीक्षा में सफल होने के लिए क्या नहीं करता? वो परिश्रम करता है, दौड़ भाग करता है, और ये सब करने के पश्चात भी जब उसका काम नहीं बनता तो वो नकल करता है ना। तनिक लौटिए अपने बचपन में, स्मरण कीजिए अपने बचपन की स्मृतियों का। क्या स्मरण हुआ? विद्यालय में जब आप परीक्षा देने जाते थे तो क्या होता था? आप ना सहे, परंतु कोई ना कोई सफलता पाने के लिए नकल करता ही था और उत्तीर्ण भी हो जाता था, है ना। परंतु जीवन की परीक्षा ऐसी नहीं होती, नकल करने वाला सफल नहीं होता। कारण, विद्यालय में सबके प्रश्न पत्र एक होते थे, परंतु जीवन के प्रश्न पत्र और उनकी कठिनाई सबके लिए भिन्न होती, तो निश्चित रूप से उनके उत्तर भी भिन्न होंगे ना। इसलिए यदि आपको जीवन में सफलता पानी है तो नकल ना कीजिए, स्वयं के प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढिए और सफलता आपकी ही होगी। मनुष्य का जीवन हार और जीत, विजय और पराजय, सफलता और असफलता के मध्य झूलता रहता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, है ना। जब आप सफल होते हैं, किसी चुनौती पर विजय पाते हैं, तो मन प्रसन्नता से आनंद के उपवन में झूमने लगता है, और जब आप असफल होते हैं तब मन दुख और पीड़ा के सागर में डूबने लगता है। परंतु वास्तव में सफलता और असफलता है क्या? तनिक ध्यान से सोचिए। ये केवल हमारी मनोस्थिति मात्र है। हमारी पराजय तब नहीं होती जब हमारा शत्रु विजय प्राप्त कर ले। हमारी पराजय तब होती है जब हम पराजय स्वीकार करें। हम असफल तब नहीं होते जब हम लक्ष्य ना पा सके। हम असफल तब होते हैं जब हम प्रयास करना बंद कर दें। इसलिए प्रयास करते रहें और हार ना माने, क्योंकि जिस दिन आप हार स्वीकारना बंद कर देंगे, जीत आपके

0: जागृति बुंद, आपने कारे सोचू है अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुंद हूँ था का?
0: अरे जागृति बुंद, आपड़ी जे नदिया है ई हुकी जाएंगा, खेतर मंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुंद, एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुंद, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुंद, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुंद, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। अगर चाहो तेज दिमाग ने स्वस्थ जीवन तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन।
0: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व नी कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थई सके।
2: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
0: होवे भाइयों बोनू, आ लक्षण आपड़ने आपड़े मय देखाय तो आपड़ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निशुल्क जांच करावी सुवे।
2: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते एनीमिया उपचार ने गोरिये निशुल्क मले है।
0: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपड़ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
2: होवे आ सब सावधानी रखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो अनिमिया थकी बची शकंगा।
3: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: सेहत नु राज हूं है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात नी शुरुआत पानी थकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात काढ़ी नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह, नींदर पूरी ला ने खुश रह।
5: होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा।
4: होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नो असली राज।
2: वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ युवा साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: लेकर हाजिर है श्रोता साथियों कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बातचीत रहने वाली है कि हमें हर समय मजबूत दिखना जरूरी नहीं है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि हम अक्सर सुनते हैं मजबूत बनो, किसी के सामने मत झुको, रोना नहीं, अपनी परेशानी खुद संभालो, लेकिन क्या हर समय मुस्कुराते रहना, अपनी परेशानी छिपाना और ये दिखाना कि हमें किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता वास्तव में मजबूती है? शायद नहीं। कई बार अपनी भावनाओं को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी मजबूती होती है।
0: बिल्कुल।
1: तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जरूर जानेंगे कि हमें हर समय मजबूत दिखना जरूरी नहीं है विषय को लेकर। लेकिन अभी सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत।
0: जी हाँ जागृति जी, तो युवा साथियों आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट के साथ में।

0: दोस्तों इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं, हर समय मजबूत दिखना जरूरी नहीं होता। हम देखते हैं कि मजबूत दिखने का दबाव हमारे युवा साथियों पर बहुत ज्यादा होता है। जागृति जी,
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि आज के युवा जीवन में कई तरह की अपेक्षाओं के बीच जी रहे हैं, जैसे कि पढ़ाई में अच्छा करना है, करियर बनाना है, प्रतियोगिताओं में आगे बढ़ना है, परिवार की उम्मीदों पर खड़ा उतरना है और दोस्तों के बीच ऐसा दिखाना है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। साथ ही सोशल मीडिया ने इस दबाव को और भी बढ़ा दिया है, जैसे कि स्क्रीन पर हमें हर किसी की जिंदगी का खुशनुमा हिस्सा दिखाई देता है। साथियों,
1: बिल्कुल,
0: किसी की सफलता, किसी की नई नौकरी, किसी की उपलब्धि तो किसी की यात्रा, और फिर हम जागृति जी अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों की दिखाई देने वाली जिंदगी से करने लगते हैं। लेकिन साथियों, हमारे मन में ये सवाल आता है कि सब इतने खुश हैं, फिर मैं परेशान क्यों हूँ? सब आगे बढ़ रहे हैं तो मैं पीछे क्यों रह गया? और यहीं से हम अपनी भावनाओं को छिपाना शुरू कर देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: हम लोगों से कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, जबकि भीतर से हम काफी थके हुए हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, थक जाना असफल होना नहीं होता, परेशान होना कमजोरी नहीं है और भावुक होना भी कोई कमी नहीं है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा, क्योंकि हम इंसान हैं, मशीन नहीं। हमारे अंदर खुशी है, दुख है, गुस्सा है, डर भी है, उत्साह भी है, निराशा भी है और उम्मीद भी है।
0: बिल्कुल
1: साथियों, हर भावना का अपना महत्व भी बहुत अलग अलग है। अगर किसी दिन हमारा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर है।
0: बिल्कुल,
1: अगर किसी असफलता के बाद हमारा मन उदास है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर किसी बात से हमें दुख हुआ है और हमारी आंखों में आंसू आ गए हैं तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम कमजोर हैं।
0: बिल्कुल,
1: आंसू कई बार मन का बोझ हल्का करने का एक स्वाभाविक तरीका होता है। इसीलिए श्रोताओं, भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें समझना जरूरी है।
0: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ युवा साथियों, आपके द्वारा ये कहना कि मैं ठीक हूँ ये हर बार जरूरी नहीं होता। हम में से बहुत से लोग दूसरों के सामने अपनी परेशानी बताने से डरते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने कहा कि हम परेशान हैं तो लोग हमें कमजोर समझेंगे।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन दोस्तों सोचिए कि अगर आपका कोई दोस्त आपसे ये कहे कि आज मेरा मन अच्छा नहीं है, मुझे थोड़ी बात करनी है, तो क्या आप उसे कमजोर कहेंगे? शायद नहीं, आप उसकी बात सुनेंगे, उसका साथ देंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे।
1: जी हाँ,
0: तो फिर जब बात जागृति जी हमारे युवा साथियों की खुद की आती है तो वे अपने लिए इतनी कठोरता क्यों रखते हैं? कभी कभी साथियों, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से ये कह देना कि मुझे परेशानी हो रही है, मदद मांगना नहीं बल्कि खुद की देखभाल करना होता है।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि मजबूत होने का मतलब ये भी नहीं है कि हमें कभी डर नहीं लगेगा। मजबूत होने का मतलब ये नहीं है कि हमें कभी दुख नहीं होगा श्रोताओं।
0: बिल्कुल,
1: और मजबूत होने का मतलब ये भी नहीं है कि हमें हर समस्या का समाधान अकेले ही करना पड़ेगा। वास्तविक मजबूती तो ये है कि हम अपनी स्थिति को पहचाने, जरूरत पड़ने पर सही व्यक्ति से मदद लें।
0: बिल्कुल,
1: जैसे हम अपने शरीर के बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही मन परेशान होने पर किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना भी सामान्य बात है। मदद मांगना हार नहीं है, मदद मांगना अपने आप को महत्व देना है।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसलिए हमारे युवा साथियों को ये समझना बहुत जरूरी है कि मदद मांगना गलत नहीं होता, क्योंकि युवावस्था जीवन का ऐसा समय होता है जब हमें अपने भविष्य को लेकर बहुत कुछ सोचना होता है दोस्तों। जैसे कि करियर, परीक्षा, नौकरी, रिश्ते, परिवार, आर्थिक जिम्मेदारियां और अपने सपनों को पूरा करने की चिंता।
1: जी हाँ,
0: ऐसी कई चीजें हैं जो एक साथ हमारे मन पर असर डाल सकती है। ऐसे समय में हमें खुद से ये कहना सीखना चाहिए कि मुझे हर दिन परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। कभी मैं बहुत अच्छा करूंगा तो कभी थोड़ा कम। कभी मैं बहुत उत्साहित रहूंगा या रहूंगी तो कभी थक भी सकती हूँ। कभी मुझे दूसरों की जरूरत होगी तो कभी मैं किसी दूसरे का सहारा भी बन सकती हूँ।
1: बिल्कुल,
0: देखा जाए जागृति जी तो यही हमारा असली जीवन है।
1: जी हाँ कशिश, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही है, हम जान पा रहे हैं कि हर समय मजबूत दिखना जरूरी नहीं है। तो ये बातें निरंतर ऐसे ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी बिल्कुल जागृति जी,

0: को हम नहीं देख पाते हैं। हमें किसी की सफलता दिखाई देती है, उसके संघर्ष के वो दिन नहीं दिखाई देते जब वो बार बार असफल हुआ था। हमें किसी की मुस्कान दिखाई देती है, उसके कठिन दिनों की कहानी याद नहीं रहती।
1: जी जी।
0: इसलिए श्रोताओं, सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली जिंदगी को अपनी पूरी जिंदगी से तुलना करना उचित नहीं है। याद रखिए, हर मुस्कुराता चेहरा खुश हो ये जरूरी नहीं, और हर शांत व्यक्ति कमजोर हो ये भी जरूरी नहीं। अपनी जिंदगी की गति को स्वीकार करना सीखिए।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि दोस्तों कई बार समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी वह हमारे मन में अकेले रहते हुए हमें लगने लगती है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को आप पहचानिए जिनसे आप खुलकर बात कर सके। वो आपके माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, शिक्षक भी हो सकते हैं, और कोई ऐसा व्यक्ति जो भरोसेमंद हो, या कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति जो आपकी बात बिना मजाक उड़ाए सुन सके। और सिर्फ अपनी बात ही नहीं कहनी श्रोता साथियों, दूसरों की बात सुनना भी आपके लिए जरूरी है।
0: जी हाँ।
1: हो सकता है जागृति जी कि हमारे आसपास कई ऐसे युवा हो जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देते हो, लेकिन अंदर से किसी की परेशानी से गुजर रहे हो। उनसे हमें बस इतना पूछ लेना है कि सब ठीक तो है, अगर बात करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी बात सुन सकता हूँ। कभी कभी किसी को ध्यान से सुन लेना श्रोता साथियों, उसके लिए बहुत मायने रखता है।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि हम दूसरों की गलतियों को माफ कर देते हैं, लेकिन अपनी एक गलती को लेकर खुद को लंबे समय तक दोष देते रहते हैं। परीक्षा में कम अंक आए, हम खुद को असफल समझने लगते हैं। किसी अवसर से चूक गए, हमें लगता है सब खत्म हो गया। लेकिन जिंदगी किसी एक परीक्षा, किसी एक परिणाम या किसी एक असफलता से तय नहीं होती श्रोता। गलती का अर्थ अंत नहीं, सीखने का अवसर भी हो सकता है। इसीलिए खुद से बातें करते समय वही शब्द इस्तेमाल कीजिए जो आप अपने किसी अच्छे दोस्त के लिए करते हैं। अपने आप से कहिए कि हाँ, आज मुश्किल था, लेकिन मैं धीरे धीरे आगे बढ़ सकती हूँ या बढ़ सकता हूँ।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ युवा साथियों, हमें मजबूत होने की परिभाषा बदलने की भी जरूरत है।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि मजबूत वह नहीं होता जो कभी रोता नहीं है, मजबूत वह भी नहीं होता युवा साथियों जिसे कभी डर नहीं लगता, मजबूत वह भी नहीं है जो हर समस्या अकेले हल करता हो, बल्कि मजबूत तो वह है जो अपनी भावनाओं को पहचाने, जरूरत पड़ने पर मदद मांगे, असफलता से सीख ले, अपनी गलतियों को स्वीकार करे और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करता हो।
0: बिल्कुल।
1: साथ ही मुश्किल समय के बाद फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करता हो। और देखा जाए जागृति जी, तो यही वास्तविक मजबूती कहलाती है।
0: और हम कह सकते हैं कि श्रोता साथियों, अगर आज आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो आपको हर किसी के सामने मजबूत बनने का अभिनय करने की जरूरत भी नहीं है। आपको हर सवाल का जवाब तुरंत देने की भी जरूरत नहीं है। आपको हर समय मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। आपको हर दिन अपनी पूरी क्षमता से काम करने की भी जरूरत नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: कुछ दिन बस खुद को संभालने के होते हैं। अपनी भावनाओं को जगह दीजिए, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात कीजिए, जरूरत हो तो परिवार, शिक्षक या किसी योग्य मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सहायता लीजिए। और अगर कोई युवा लगातार बहुत ज्यादा परेशान है श्रोताओं, निराश या असहाय महसूस कर रहा है, तो उसे अकेले इससे जूझने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए। किसी भरोसेमंद बड़े व्यक्ति तक बात पहुँचाना एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो इस तरीके से कार्यक्रम युवाओं की आवाज के माध्यम से हम हमारे युवाओं को यही कहना चाहेंगे कि दोस्तों, हर समय मजबूत दिखना जरूरी नहीं होता।
0: बिल्कुल।
1: हर समय मुस्कुराना जरूरी नहीं है, हर समस्या अकेले सुलझाना भी जरूरी नहीं है। कभी रुकना भी जरूरी होता है, कभी खुद को समझना भी जरूरी होता है, और कभी किसी का हाथ थाम कर किसी को अपना हाथ थामने देना भी जरूरी होता है।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि जिंदगी में मजबूत वह नहीं होता जो कभी टूटता नहीं है, बल्कि वह भी मजबूत है साथियों जो मुश्किल समय को स्वीकार करता हो, खुद को संभालता हो और धीरे धीरे फिर आगे बढ़ने की कोशिश करता हो। इसलिए अपनी भावनाओं से मत भागिए, उन्हें समझिए, अपनी परेशानियों को मत छिपाइए, सही व्यक्ति से साझा कीजिए और खुद को साथियों कमजोर समझने की बजाय खुद के प्रति थोड़ा और संवेदनशील बनिए। क्योंकि आपको हर समय मजबूत दिखने की नहीं, हर परिस्थिति में खुद के साथ खड़े रहने की जरूरत है।
0: बिल्कुल कशिश, तो हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि श्रोता साथियों, हमारी भावनाएं मायने रखती हैं और हमारी आवाज भी मायने रखती है। मजबूत होने का मतलब भावनाओं को छिपाना नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ना भी है।
1: जी बिल्कुल, तो इन्हीं बातों के साथ और इन्हीं उम्मीदों के साथ दोस्तों, आज हम कार्यक्रम के माध्यम से आपसे ढेर सारी बातें कर पाए हैं।
0: जी हाँ।
1: हमने जाना कि किस प्रकार से युवा साथियों को वर्तमान में ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन समस्याओं से डरकर आगे बढ़ना ही सच्ची सफलता है।
0: बिल्कुल।
1: तो बातें जैसा कि हो चुकी है जागृति जी, और समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे युवाओं को यहाँ पर एक और गीत हम सुनवा दें।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज के कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: बुनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपनो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पिता ने उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपनो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन, तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है। जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: भाई ने बोलो, आप एक आरे विचार करियो है कि जैया पेड़ की छाव में आपने रह हूं, यह आपने ने कितनी शांति मिले है। जीनी हवा में आपने हाल हूं, ई भी आपड़ा थकी कई आश रागे है। होवे, अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं, बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा, ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
2: होवे, प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
1: होवे, आज नाना ना कदम है, ई आबा वाला काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
2: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

नमस्कार श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर, लेकर हाजिर हो चुकी हूं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर एक नए विषय के साथ में। जी हां श्रोता साथियों, कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी जानते हैं कि हम बात करते हैं हमारे बच्चों की सेहत, उनकी खुशियों, उनकी पढ़ाई और उनके बेहतर भविष्य की। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो लगभग हर घर से जुड़ा हुआ है। बच्चा दुकान के सामने से गुजरता है तो चिप्स का पैकेट देखकर रुक जाता है। रंग बिरंगे पैकेट, मीठे पेय, नूडल्स, बिस्किट और तरह तरह के फास्ट फूड देखकर बच्चों का मन ललचा जाता है। माता पिता भी कई बार बच्चों की जिद के आगे कह देते हैं, चलो आज खा लो, रोज थोड़ा ही तो खाते हो। लेकिन श्रोता साथियों, सवाल ये है कि आखिरकार ये चीज बच्चों को इतनी पसंद क्यों आती है? क्या हर पैकेट में मिलने वाला खाना वास्तव में बच्चे के लिए सही है? क्या कभी कभार जंक फूड दिया जा सकता है? और अगर बच्चा घर के पौष्टिक खाने के बजाय सिर्फ बाहर का खाना मांगता है तो माता पिता क्या करें? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे कार्यक्रम के माध्यम से विशेषज्ञ अवश्य जुड़ेंगे। उनसे हम ढेर सारी बातों को जानेंगे, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत भी करना चाहेंगे। और गीत से पहले, जैसा कि मैंने आपको विषय से रूबरू करा दिया था कि आज हम बात करने वाले हैं जंक फूड से दूरी, सेहत से दोस्ती के बारे में हम बच्चों को कैसे सिखाएं। जी हाँ दोस्तों, आज कार्यक्रम में इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं उन्हीं से ढेर सारी बातों को। सर नमस्कार।
1: नमस्ते
0: सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं वागड़ रेडियो परिवार में।
1: जी
0: सर, जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपका परिचय जानना चाहूंगी।
1: जी मैडम, मेरा नाम डॉक्टर मुनव्वर इब्राहिम हुसैन है। मैं सीनियर मेडिकल ऑफिसर हूँ राजकीय जनता क्लिनिक मधुबन कॉलोनी बांसड़ा में, और मैं 1990 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और अभी मैं वर्तमान में डायबिटीज में फेलोशिप ली हुई है और मेरा खास क्षेत्र डायबिटीज के अंदर है।
0: बिल्कुल, तो सर जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं और आज हमारे कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है कि जंक फूड क्या है और किस तरीके से हम बच्चों को इस आदत से बचा सकते हैं, तो सबसे पहले आप हमें यही बताइए आसान सी भाषा में कि आखिरकार जंक फूड क्या होता है और किन चीजों को हम जंक फूड की श्रेणी में रख सकते हैं।
1: जी मैडम, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल हमारा पूरा ध्यान, बल्कि पूरा विश्व का ध्यान जंक फूड की तरफ है और जंक फूड से होने वाले जो मतलब हानिकारक इसके प्रभाव है, इसके ऊपर पूरा विश्व चिंतित है।
0: बिल्कुल,
1: न केवल डॉक्टरी समाज बल्कि पूरा विश्व चिंतित है। देखिए मैडम, जंक फूड एक ऐसा भोजन है जिसमें स्वाद और कैलोरी अधिक होती है लेकिन एक्चुअली में उसमें पोषक तत्व कम होते हैं। और कुछ मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे पिज्जा है, बर्गर है, चिप्स है, नूडल्स है, फ्रेंच फ्राइज है और पैकेट वाले जितने भी स्नैक्स है, एक्चुअली क्या होता है कि हमारा ह्यूमन शरीर होता है और खासकर बच्चों के अंदर हमें पोषक तत्वों की बहुत जरूरत होती है, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, और ये सब चीजें है प्राकृतिक चीजों में होती है, प्राकृतिक फूड में होता है। लेकिन जंक फूड है पहले से प्रिपेयर किया हुआ और कई बार ये फ्रीज में रख के 8-10 दिन और कई बार तो महीने महीनों तक होता है, तो इसके अंदर क्या पौष्टिकता का अभाव होता है, इसमें स्वाद अधिक होता है लेकिन पोषक तत्वों की इतनी कमी होती है। और सबसे पहली बात यह है कि ये एक तरह से ऐसी फीलिंग देता है कि हमारा पेट भर गया है और बच्चों की फीलिंग आती है कि उसकी एपिटाइट भर गई है, इसकी वजह से उसको पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाते मैडम।
0: जी बिल्कुल।
1: और देखिए इसमें कैलोरीज बहुत अधिक होती है लेकिन न्यूट्रिशन बिल्कुल कम होता है और बच्चों के अंदर इसकी डेली हैबिट बनने में कोई वक्त नहीं लगता मैडम।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि सर आपने बताया कि जंक फूड क्या है, तो हम देखते हैं कि बच्चे जो है वो घर की दाल, सब्जी और रोटी

0: सबसे ज्यादा चिप्स, कुरकुरे और नूडल्स जैसी चीजों को पसंद करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या इन चीजों का स्वाद और आकर्षक पैकेजिंग बच्चों को ज्यादा प्रभावित करती है?
1: जी मैडम, देखिए जंक फूड में नमक, चीनी और वसा की मात्रा अधिक होती है, जिससे बच्चों को ये स्वाद बहुत पसंद आता है।
0: बिल्कुल,
1: उनके अंदर थोड़ा ज्ञान का अभाव होता है, इसलिए वो उन चीजों को पसंद करते हैं जो उनकी जबान ज्यादा चाहती है, जैसे थोड़ा कुरकुरा हो, थोड़ा नमक हो, थोड़ी चीनी हो। तो बच्चों को ये चीजें बहुत भाती है और उनको लगता है कि इससे इनकी एपिटाइट पूरी हो जाएगी। और इसके अलावा जो रंगीन पैकेजिंग होती है और जो लुभावने विज्ञापन जैसे हम टीवी में देखते हैं, और बच्चे आजकल छोटे छोटे बच्चों को माताएं मोबाइल दे देती है हाथ में, तो मोबाइल के विज्ञापन भी बच्चों को बहुत आकर्षित करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और इनका दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ता है मैडम।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि आपने बताया कि सर किस तरीके से बच्चे जंक फूड की ओर आकर्षित होते हैं, यही अब मैं जानना चाहूंगी कि अगर बच्चा लगातार जंक फूड खाता रहे तो इसका उसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या इसका असर उसकी ऊर्जा, एकाग्रता, पढ़ाई, नींद और मानसिक विकास पर भी पड़ता है?
1: जी मैडम, देखिए जंक फूड खाने से बच्चों की वजन बढ़ता है, दांतों की समस्या शुरू हो जाती है, पोषण की कमी जैसी परेशानियां हो जाती है, और असंतुलित आहार बच्चों की ऊर्जा, एकाग्रता और सीखने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। मैडम, आपसे 25 साल पहले एक शब्द है BMI, बॉडी मास इंडेक्स, हमने कभी किसी बच्चों को ओबेसिटी में नहीं देखा है आज से 25 साल पहले, क्योंकि उस समय जंक फूड का बहुत नया नया था या लगभग मिलता ही नहीं था। आज हालत यह है कि शहर को छोड़िए, गांवों की छोटी छोटी दुकानों पे जंक फूड अवेलेबल है, और खासकर कुछ कंपनियां रात को 1-2 बजे तक घरों के अंदर जंक फूड की सप्लाई करती है। अब बच्चों को इनकी ऐसी आदत हो गई है कि हमने कई बच्चों का बॉडी मास इंडेक्स, तो है अमूमन बच्चों का बॉडी मास इंडेक्स 22 से 25 के बीच होना चाहिए, लेकिन हमने कई बच्चों को देखा एडोलेसेंट में, खासकर 8 से 15 वर्ष की उम्र में सभी बच्चों की BMI बढ़ा हुआ है, यानी बॉडी मास इंडेक्स बढ़ा हुआ है, उनकी पेट निकला हुआ है, तोन निकली हुई है, और थोड़े चलने पे वो खाप जाते हैं, उनमें एकाग्रता का बहुत अभाव होता है। जंक फूड एक्चुअली क्या होता है, शरीर के अंदर जो न्यूट्रिशियस वैल्यू की जो फूड है उसको रिप्लेस करने में लगा हुआ है, और बच्चे बहुत जल्दी इनमें आकर्षित होते हैं, और इसमें दोष थोड़ा बहुत हमारे पेरेंट्स का भी है मैडम।
0: बिल्कुल सर, तो जैसा कि आप बहुत अच्छी जानकारी हमें दे रहे हैं, तो यही माता पिता के मन में यह सवाल आता है अक्सर कि अगर बच्चा कभी कभार जंक फूड के खाने की जिद करता है तो सप्ताह में एक बार देना ठीक है। ऐसी स्थिति में मात्रा और चुनाव को लेकर माता पिता को किन किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है?
1: मैडम, बच्चे कभी चाहे तो ठीक है, कभी कभार वंस इन अ व्हाइल जंक फूड दे सकते हो, लेकिन बच्चे की डाइट बैलेंस है तो वीक में एक बार लिमिटेड क्वांटिटी में उसकी पसंद दी जा सकती है। इससे लेकर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव होने की जरूरत नहीं, क्योंकि बच्चों की आदत होती है, हम जितना रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे ना उतना ही उनको अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो इसके लिए हमारा एक ही है कि बच्चों के लिए एक सेमिनार रखा जाए जगह जगह, और माँ बाप को भी सेमिनार में बताया जाए कि माँ बाप अपनी कई बार आलसी होते हैं, मेहनत करने की प्रवृत्ति से बचने के लिए बच्चों को जंक फूड की तरफ ले जाते हैं। कई बार तो माँ बाप घर में बना हुआ भोजन नहीं देके बच्चों को स्कूल के अंदर ड्राई फ्रूट के पैकेट दे देते हैं। तो ये जो असंतुलित आहार है इससे रोज की आदत बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए, और इसको माँ बाप का लिटरेसी होना और माँ बाप का ज्ञान होना बहुत जरूरी मैडम, क्योंकि बच्चे वही देखते हैं और बच्चे वही सीखते हैं जो उनके घरों में हो रहा है। बच्चों, माँ बाप की ये प्रवृत्ति होती है कि 2-3 दिन लगातार बच्चों को अगर नहीं देना हो तो बाजार से मंगवा के, या फिर कई बार तो हमने देखा है प्रैक्टिकली, क्योंकि प्रैक्टिकली हमने देखा है कि बच्चों को लोग माँ बाप पैसे दे देते हैं कि आप ये पैसे लेते जाओ, और स्कूल जाते हुए बाजार से समोसे, कचौरी, जंक फूड, पेप्सी और दूसरे जो चीज होती है चिप्स वगैरह, वो लेके अपना नाश्ता स्कूल में पूरा कर देते हैं। तो इसके लिए स्कूल प्रशासन, माँ बाप सभी उत्तरदायी है।
0: बिल्कुल, यही सर अब जानना चाहूंगी कि कोल्ड ड्रिंक और पैकेट वाले जूस बच्चों के शरीर पर किस तरीके से नुकसानदायक होते हैं?
1: मैडम, सबसे पहली बात ये कि जो आप कह रहे हैं इन सब के अंदर चीनी की मात्रा बहुत होती है, और चीनी की मात्रा ऐसे डाली जाती है ताकि उसको पैलेटेबल बनाया जा सके। इसमें पूरे फल जो होते हैं हमारे जो प्राकृतिक फल होते हैं उनके जितना इसमें फाइबर बिल्कुल नहीं होता है, और फाइबर हो ही नहीं सकता है क्योंकि प्राकृतिक नहीं है। इसके लिए रोज पीने के बजाय पानी, दूध या बिना चीनी के पेय को प्राथमिकता देनी चाहिए। आजकल मार्केट में जितने भी पेय पदार्थ आ रहे हैं, लोग समझते हैं कि इससे हमारी गर्मी कम हो जाएगी, शरीर में ठंडक पैदा हो जाएगी। ये बिल्कुल ही प्रतिकूल विचार है, ये नेगेटिव रिस्पॉन्स है। और बच्चों को इसके बजाय पेप्सी लिमका के बजाय अगर बच्चे प्राकृतिक जैसे संतरा है, मौसमी है, उसका सेवन करेंगे तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और चीनी नहीं होती।
0: बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया सर कि किस तरीके से हमें बच्चों को कोल्ड ड्रिंक नहीं देनी है, ये हम देखते हैं कि बच्चे जो है वो बहुत सी बार शाम के समय कुछ अलग सा चटपटा स्वादिष्ट खाने का उन्हें मन करता है और वो उसको लेकर जिद करते हैं। तो घर पर कौन कौन से हेल्दी स्नैक्स हम बना सकते हैं?
1: मैडम जैसे कि आप देते हैं ग्रामीण परिवेश में, तो अभी भी घरों के अंदर भुना चना, मखाना, पोहा, उपमा, मूंग दाल, चीला, फल, स्प्राउट, दही और घर के बने हुए सैंडविच पौष्टिक आहार से भरपूर होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो सभी माता और बहनों को चाहिए कि घर पे जो बना हुआ है खुद का सबसे अच्छा है चना मसाला। चना मसाला के अंदर मैडम क्या प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होती है।
0: जी जी।
1: और सबसे अच्छा आहार अगर सुबह बच्चों को देना हो स्कूल में तो उसके लिए पोहा, उपमा, मूंग दाल, चीला, मैडम इनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ये लेकिन माता और बहनों को इनकी आदत भी डालनी होगी स्वयं के लिए और अपने बच्चों के लिए, दोनों के लिए।
0: बिल्कुल सर। तो जैसा कि आपने बताया कि बच्चों को खाने में हम पोहा, उपमा, चना, मखाना ऐसी चीजें चाट बनाकर और अलग तरीके से दे सकते हैं, ताकि बच्चे के चटपटा खाने का जो मन होता है, उसकी जो क्रेविंग होती है वो भी पूरी हो जाए और पोषण भी पूरा हो जाए। यही सर बहुत सी बार बच्चे बहुत ज्यादा जिद करने लगते हैं, तो उसकी जिद को माता पिता कैसे संभालें?
1: मैडम बच्चा जिद है तो डांटने के बजाय हेल्दी ऑप्शन में चॉइस रखें, जैसे मखाना खाओगे या सैंडविच। वो पेरेंट्स को कंसिस्टेंट रहना चाहिए, बच्चों की जिद पर हर बार जंक फूड दे देंगे तो उसकी हैबिट और बिगड़ती जाएगी। बच्चों की जिद पर गुस्सा करने के बजाय उन्हें प्यार से समझाए और उनको हेल्दी विकल्प दे, घर में नियम पहले से तय करें और माता पिता स्वयं भी उन नियमों का पालन करें। जैसे हम हमारी एज में आके हमने शाम का खाना बिल्कुल कम कर दिया है। मैं व्यक्तिगत तौर पर डॉक्टर बता रहा हूँ कि हम लोग बहुत डाइट कॉन्शियस है, तो हम अपने बच्चों को भी यही सलाह देते हैं कि आप डाइट कॉन्शियस रहें।
0: जी हाँ सर। तो जैसा कि हम देखते हैं कि बच्चे जो है वो अपना दिन का काफी समय स्कूल में बिताते हैं, ऐसे में स्कूल की कैंटीन और आसपास मिलने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आपके अनुसार स्कूल कैंटीन में किन चीजों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए और किन चीजों को सीमित करना चाहिए?
1: मैडम स्कूल बच्चों का सबसे बड़ा जो वक्त अच्छा निकलता है और जो बच्चे सीखते हैं वो घर के बाद स्कूल आती है, तो स्कूल में कैंटीन में बहुत बदलाव होना चाहिए और खासकर स्कूल प्रशासन को इस बारे में बहुत ही गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि कैंटीन में चिप्स, मीठे पेय और बहुत अधिक तले हुए खाद्य पदार्थों की जगह अगर फल, दही, इडली, पोहा, उपमा, साबुत अनाज से बने स्नैक और पौष्टिक पेय उपलब्ध हो तो बच्चों की आदतों में बहुत सुधार आएगा। क्योंकि हम अगर विकसित भारत की कल्पना जो कर रहे हैं 2047 की, 2047 की, तो उसके लिए बहुत अच्छा वक्त है कि हम अभी से इन चीजों की तैयारी करें। इसमें राज्य सरकार के साथ साथ स्कूल प्रशासन को बहुत ही गंभीरता से विचार करके स्कूल के कैंटीन में फास्ट फूड को बिल्कुल बंद ही करवा देना चाहिए।
0: बिल्कुल सर।
1: तो स्कूल प्रशासन चाहे मैडम सबसे अच्छे फल है, अच्छा दही है, दही प्रोबायोटिक होता है, दही है, पोहा है, उपमा है, जैसा मैंने कहा ये सब पौष्टिकता से भरे हुए होते हैं। शुरुआत में कुछ बच्चों को तकलीफें जरूर होगी, लेकिन एक बार ये रूटीन बन जाएगा ना तो हमारे बच्चे उसी तरफ अग्रसर होते जाएंगे।
0: बिल्कुल सर। तो जैसा कि सर आपने कार्यक्रम में बहुत अच्छी बातों से हमें अवगत करवाया है, यही अगर किसी बच्चे को लंबे समय से सुबह मीठा, नमकीन और मसालेदार खाने की चीजें पसंद हो तो उसे धीरे धीरे घर के सामान्य जो स्वाद है उसकी आदत कैसे डाली जा सकती है? क्या स्वाद बदलने में समय लगता है और माता पिता को इसके लिए धैर्य बनाकर रखने की जरूरत है?
1: जी हाँ बिल्कुल मैडम, एकदम से तो ये बंद होने वाला नहीं, धीरे धीरे जागरूकता जैसे सेमिनार करें और बच्चों के मन में डालें, बच्चों की स्कूली किताबों में इनके प्रभाव और दुष्प्रभाव की पूरी विवेचना हो कि फॉल्ट और शुगर कम करें, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हमें बहुत आश्चर्य हो रहा है कि सारे बच्चे इन दिनों में ओबेसिटी की तरफ बढ़ रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: ओबेसिटी की वजह है पूरी शुगर इनकी मात्रा कम करती रहती है, तब प्रभाव पड़ेगा। लेकिन बच्चे तभी समझेंगे जब उन्हें बताया जाएगा, उन्हें जागरूक बनाया जाएगा। बिना जागरूकता इन बच्चों को कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन्हें जागरूकता देना जरूरी, इन्हें ज्ञान देना जरूरी कि आपका उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है।
0: बिल्कुल सर, तो जैसा कि आपने जंक फूड को लेकर हमें ढेर सारी बातों से अवगत करवाया है कि किस तरीके से जंक फूड हमारे बच्चों के लिए सही नहीं होता है, बच्चे इसकी ओर आकर्षित कैसे होते हैं और किन बातों का विशेष तौर पर माता पिता, शिक्षक, विद्यालय के जो अन्य कैंटीन की जो सदस्य हैं उन सभी को ध्यान रखने की जरूरत है। तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: जी मैडम धन्यवाद, लेकिन मेरा बस सभी पेरेंट्स से एक सिंपल मैसेज है, बच्चों को जंक फूड से रोके मत, उन्हें हेल्दी फूड पसंद करना सिखाइए। हेल्दी ईटिंग की शुरुआत बच्चे से नहीं होती मैडम, अपने घर से होती है। अगर अच्छी हैबिट्स बचपन में बन जाए तो उसका फायदा पूरे जीवन में मिलता है।
0: बिल्कुल,
1: मैं रिक्वेस्ट बच्चों से भी करना चाहता हूँ कि अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे और अच्छा पढ़े, और अच्छे पढ़ने के लिए जंक फूड से दूरी बहुत जरूरी है। जंक फूड कभी कभार ठीक है लेकिन इसकी रोज की आदत नहीं बनानी चाहिए। स्वस्थ भोजन दें, पर्याप्त पानी पिए, खेलकूद करें और अच्छी दिनचर्या से ही बच्चे स्वस्थ और खुश रह सकते हैं। मैडम मैं चाहता हूँ ये संदेश सभी लोगों में और खासकर वार्डन के बच्चों में जाए ताकि हमारे बच्चे जो फास्ट फूड और जंक फूड की जो कूल प्रथा है उससे दूर होते जाए। धन्यवाद।
0: साथियों जैसा कि अभी हमारे बीच में डॉक्टर मुनव्वर जुड़े हुए थे और उनके माध्यम से हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से बच्चों का हमें विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। आज की बातचीत से एक बात साफ है कि बच्चों को सिर्फ यह कहना काफी नहीं है कि जंक फूड मत खाओ, बल्कि हमें उनके सामने स्वादिष्ट, सुरक्षित और पौष्टिक विकल्प भी रखने होंगे। बच्चों के खाने की आदत एक दिन में नहीं बदलती, प्यार, धैर्य और घर का अच्छा माहौल बनाकर धीरे धीरे उनकी पसंद को बेहतर किया जा सकता है। याद रखिए श्रोता साथियों कि बच्चों के हाथ में दिया गया हर निवाला उसके आज का पेट नहीं भरता बल्कि उसके आने वाले कल की सेहत भी तैयार करता है। इसलिए कोशिश करें कि घर का खाना बच्चों के लिए स्वादिष्ट भी हो और पौष्टिक भी। पैकेट के रंग से ज्यादा खाने की गुणवत्ता देखें और बच्चे की जिद से ज्यादा उसकी सेहत को महत्व दें। तो जैसा कि बातें आज कार्यक्रम में हमारी आपसे ढेर सारी हो गई है और अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पति का कपड़ा।
0: कपड़ा।

साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन से विदा लेना चाहेंगे। आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर को कार्यक्रम सच्चा बचपन से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बोन ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बोन आप हमरी रहो आपड़ो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनु घणमान स्वागत करा हम अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम के भाई बोनो अमे अमारे टाइम माते हाजिर थे सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक नया विषय ने हाथते। तो भाई बोनो आज अमारे कार्यक्रम में अब तक की बातचीत ने विषय है कि आदिवासी संस्कृति में बीजों आदान प्रदान ने जे चीजें हती अणन हूँ महत्व है ने हरते फिर ते की अणी सब चीजें ने बड़ा वो अलवानी अपना ने जरूरत है। तो कार्यक्रम में अणा विषय माते हमारी अब तक घना कानी बातें थाएंगा पण कार्यक्रम शुरू करा एने पहले आपने हमरा विदा गीत ने मोरे करा अपनी बातें। तो भाई बोनो आप हमरते रहसु अपड़ू रेडियो अपनी बातें वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है, विषय है ग्राम सभा, लोकतंत्र को गांव तक पहुंचाने का माध्यम। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि लोकतंत्र केवल संसद और विधानसभा की दीवारों तक सीमित नहीं है। श्रोताओं, लोकतंत्र की असली ताकत तब दिखाई देती है जब गांव का एक सामान्य नागरिक भी अपनी बात कह सके, अपने गांव के विकास पर सवाल पूछ सके और निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनी भागीदारी निभा सके।
0: जी हाँ
1: अंजलि, गांव की इसी लोकतांत्रिक शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण मंच है ग्राम सभा। ग्राम सभा वो स्थान है जहाँ जनता केवल मतदाता नहीं रहती बल्कि अपने गांव के भविष्य की सहभागी और निर्णयकर्ता भी बनती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी।
1: जी हाँ,
0: लेकिन कार्यक्रम के पहले गीत के साथ में क्यों ना हम हमारे श्रोता साथियों को मनोरंजन करवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है ग्राम सभा, लोकतंत्र को गांव तक पहुंचाने का माध्यम।
1: बिल्कुल। तो जागृति जी, लोकतंत्र की मजबूती केवल संसद और विधानसभा में होने वाली चर्चाओं से नहीं बल्कि गांव की चौपाल पर उठने वाली आम नागरिक की आवाज से भी तय होती है। जिस दिन गांव का हर व्यक्ति अपने अधिकारों को समझकर अपनी जिम्मेदारी निभाने लगेगा उस दिन लोकतंत्र वास्तव में मजबूत होगा। ग्राम सभा इसी लोकतांत्रिक भावना को गांव-गांव तक पहुंचाने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है।
0: बिल्कुल।
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि भारत को गांवों का देश कहा जाता है। देश की बड़ी आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और गांवों का विकास सीधे तौर पर देश के विकास से जुड़ा हुआ है।
0: जी हाँ।
1: इसलिए लोकतंत्र की सफलता तभी पूरी मानी जा सकती है जब लोकतंत्र की भावना देश के अंतिम गांव और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। ग्राम सभा इसी उद्देश्य को पूरा करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है। यह वह मंच है जागृति जी, जहां ग्रामीण नागरिक अपने गांव की समस्याओं, जरूरतों और विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा कर सकते हैं और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि, सरल शब्दों में कहे तो ग्राम सभा गांव के मतदाताओं की सामूहिक सभा है। ये पंचायत व्यवस्था में जनता की सीधी भागीदारी का महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: बिल्कुल।
0: श्रोताओं, ग्राम सभा में गांव के लोग अपने क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करते हैं और पंचायत के कार्यों, विकास योजनाओं के संबंध में अपनी बात भी रखते हैं।
1: बिल्कुल।
0: ग्राम सभा का महत्व इसीलिए भी अधिक है अंजलि, क्योंकि इसमें नागरिक केवल सरकार की योजनाओं के लाभार्थी नहीं रहते बल्कि वे गांव के विकास की प्रक्रिया के सहभागी बनते हैं और यही भावना लोकतंत्र की मूल भावना है।
1: बिल्कुल जागृति जी, यही अब बात आती है कि लोकतंत्र को गांव तक पहुंचाने का माध्यम क्या है।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, लोकतंत्र का अर्थ केवल चुनाव के समय मतदान करना नहीं है। लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ है जनता की भागीदारी, समान अवसर, अपनी बात कहने की स्वतंत्रता, जवाबदेही और सामूहिक निर्णय।
0: जी हाँ।
1: श्रोता साथियों, ग्राम सभा इन सभी मूल्यों को गांव के स्तर पर मजबूत करने का काम करती है। जब गांव का नागरिक ग्राम सभा में बैठकर अपने गांव की समस्याओं पर चर्चा करता है, प्रश्न पूछता है और समाधान के लिए सुझाव देता है, तब लोकतंत्र उनके दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाता है और इसलिए ग्राम सभा को लोकतंत्र की जमीनी पाठशाला कहा जाता है।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि गांव की वास्तविक समस्याओं को सबसे अच्छी तरह गांव के लोग ही समझ सकते हैं। बाहर से बनाई गई योजना हर बार स्थानीय जरूरत के अनुसार प्रभावी हो ये जरूरी भी नहीं है। ग्राम सभा स्थानीय लोगों को अपनी समस्याएं सामने रखने का अवसर देती है।
1: बिल्कुल।
0: हम देखते हैं कि गांव में पीने के पानी की समस्या है, सड़क खराब है, विद्यालयों में सुविधाओं की कमी है, स्वास्थ्य सेवा पर्याप्त नहीं है, नाली और स्वच्छता की समस्या है या रोजगार के अवसर कम है। इन सभी विषयों को ग्राम सभा में उठाया जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: इससे विकास की प्राथमिकताएं वास्तविक जरूरतों के आधार पर तय करने में हमें मदद मिलती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, यही अब बात आती है विकास योजनाओं में जनभागीदारी की। श्रोता साथियों, किसी भी गांव का विकास केवल सरकारी योजनाओं से नहीं हो सकता, इसके लिए ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।
0: बिल्कुल।
1: ग्राम सभा लोगों को यह अवसर देती है जागृति जी कि वे अपने गांव के विकास की योजनाओं पर विचार करें और अपनी प्राथमिकताएं सामने रखें। जब ग्रामीण स्वयं विकास कार्यों की योजना बनाने और उनकी निगरानी में भाग लेते हैं तो उनमें अपने गांव के प्रति जिम्मेदारी की भावना पड़ती है।
0: बिल्कुल।
1: और यही लोकतंत्र की सुंदरता है, सरकार के साथ जनता और योजना के साथ जनभागीदारी।
0: जी हाँ अंजलि, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही है कि ग्राम सभा लोकतंत्र को गांव तक पहुंचाने का माध्यम किस तरह से हो सकती है, तो इस विषय पर बातें हमारी बनी रहेंगी कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि ग्राम सभा क्या है, लोकतंत्र को गांव तक पहुंचाने का माध्यम क्या है, गांव की समस्या हम कैसे पहचाने, साथ ही हमने जाना विकास योजनाओं में जन भागीदारी के बारे में। यही अब बात आती है जागृति जी, पारदर्शिता और जवाबदेही की। तो श्रोता साथियों, लोकतंत्र में जनता को यह जानने का अधिकार है कि उसके क्षेत्र के विकास के लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं और सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग किस प्रकार हो रहा है। ग्राम सभा इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पंचायत के कार्यों, योजनाओं और विकास गतिविधियों पर चर्चा होने से पारदर्शिता भी बढ़ सकती है। ग्रामीण अपने सवाल और सुझाव सामने रख सकते हैं। जब जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के सामने जनता सक्रिय रूप से सवाल करती है जागृति जी, तो जवाबदेही की भावना मजबूत होती है। जहाँ सवाल पूछने की संस्कृति होती है श्रोता साथियों, वहाँ व्यवस्था में सुधार की संभावनाएं भी बढ़ जाती है।
1: बिल्कुल अंजलि, जैसा कि आपने बताया कि पारदर्शिता और जवाबदेही क्या होती है, यही अगर हम हमारी महिलाओं की भागीदारी को लेकर हम बात करें तो गांव के विकास में महिलाओं की भूमिका बहुत जरूरी है। पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, परिवार और आजीविका से जुड़े कई सारे विषय महिलाओं के दैनिक जीवन से जुड़े होते हैं। अगर ग्राम सभा में महिलाएं सक्रिय रूप से भाग लेती है तो विकास की चर्चा और अधिक व्यापक बनती है। महिलाओं की आवाज गांव की प्राथमिकताओं को बेहतर तरीके से सामने ला सकती है। इसलिए श्रोताओं, आवश्यक है कि ग्राम सभा में महिलाओं को केवल उपस्थित रहने तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उन्हें अपनी बात रखने और निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर मिले।
0: बिल्कुल जागृति जी, यही युवाओं को लेकर बात करें तो श्रोता साथियों, आज गांवों के युवा शिक्षा, तकनीकी, रोजगार और नए विचारों से जुड़े हुए हैं।
1: बिल्कुल,
0: युवाओं में गांव को आगे ले जाने की बड़ी क्षमता है। ग्राम सभा युवाओं को अपनी ऊर्जा और विचारों का सकारात्मक उपयोग करने का मंच दे सकती है। युवा डिजिटल शिक्षा, कौशल विकास, खेल, रोजगार, उद्यमिता, पर्यावरण संरक्षण और तकनीकी से जुड़े विषय ग्राम सभा में उठा सकते हैं।
1: जी हाँ,
0: युवा यदि ग्राम सभा की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लें तो केवल अपने भविष्य के बारे में नहीं बल्कि पूरे गांव के भविष्य के बारे में सोचने की आदत को विकसित कर सकते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि लोकतंत्र की सफलता इस बात से भी तय होती है कि समाज के कमजोर और वंचित वर्गों की आवाज कितनी सुनी जा रही है। ग्राम सभा का उद्देश्य ऐसा वातावरण बनाना होना चाहिए जहां प्रत्येक व्यक्ति सम्मान के साथ अपनी बात को रख सके। गरीब परिवारों, छोटे किसानों, मजदूर, महिलाओं, बुजुर्ग और अन्य जरूरतमंद लोगों की समस्याओं को विकास की मुख्य धारा में शामिल करना बहुत जरूरी है। कहा भी गया है कि लोकतंत्र वही मजबूत है जिसमें सबसे कमजोर व्यक्ति की आवाज भी सुनी जाए।
0: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि ग्राम सभा केवल सरकारी योजनाओं की चर्चा तक सीमित नहीं होनी चाहिए, यह गांव की सामाजिक समस्याओं पर संवाद का मंच भी बन सकती है।
1: बिल्कुल,
0: बाल विवाह, नशे की समस्या, अशिक्षा, स्वच्छता, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, पलायन और सामाजिक भेदभाव जैसे विषयों पर सामूहिक चर्चा की जा सकती है। जब किसी समस्या का समाधान गांव के लोग मिलकर खोजते हैं श्रोता साथियों, तो उस समाधान के सफल होने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। कहना चाहेंगे कि गांव का जीवन जल, जमीन और जंगल जैसे प्राकृतिक संसाधनों से गहराई से जुड़ा हुआ है।
1: बिल्कुल,
0: पानी की कमी, भूजल स्तर में गिरावट, प्राकृतिक संसाधनों का असंतुलित उपयोग ग्रामीण जीवन को प्रभावित कर सकता है। ग्राम सभा में जल संरक्षण, तालाबों की देखभाल, वर्षा जल संचयन, वृक्षारोपण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर चर्चा की जा सकती है। यदि जागृति जी, गांव अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए सामूहिक संकल्प ले तो आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य की तैयारी की जा सकती है।
1: बिल्कुल अंजलि, जैसा कि आपने जल और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में बताया, साथ ही सामाजिक समस्याओं के समाधान के मंच को लेकर हमने बात की, वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य पर बात करते हैं। जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी समाज की नींव है। ग्राम सभा में विद्यालयों की स्थिति, बच्चों की शिक्षा, स्कूल छोड़ने वाले बच्चे, स्वास्थ्य सेवाओं, पोषण और स्वच्छता जैसे विषयों पर चर्चा की जा सकती है।
0: बिल्कुल,
1: गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और प्रत्येक परिवार को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा मिले, ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि समाज की भी साझा जिम्मेदारी है।
0: जी हाँ,
1: महात्मा गांधी जी ने ग्राम स्वराज की कल्पना ऐसे गाँव के रूप में की थी श्रोताओं, जो अपने विकास और निर्णयों में आत्मनिर्भर तथा सहभागी हो। ग्राम सभा इसी विचार को जमीन पर मजबूत करने का माध्यम बन सकती है। अंजलि, सच्चा स्वराज केवल सत्ता के हस्तांतरण का नाम नहीं है। सच्चा स्वराज तब है जब व्यक्ति अपने अधिकारों के साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी समझे और अपने समुदाय के विकास में अपना योगदान दे। जब गांव के लोग मिलकर निर्णय लेते हैं अंजलि, अपने संसाधनों की रक्षा करते हैं और विकास कार्यों की निगरानी करते हैं, तब ग्राम स्वराज की भावना और भी मजबूत बन जाती है।
0: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि ग्राम सभा की सफलता केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि बैठक हुई है या नहीं। असली सफलता तब होती है जब लोग बैठक में सक्रिय रूप से भाग लें। हमें ग्राम सभा को केवल औपचारिक बैठक न मानकर श्रोता साथियों संवाद और समाधान का मंच बनाना होगा।
1: बिल्कुल,
0: लोगों को अपनी समस्या रखने के साथ साथ समाधान के सुझाव भी देने चाहिए। समस्या बताने वाला नागरिक महत्वपूर्ण है, लेकिन समाधान में भाग लेने वाला नागरिक लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। लोकतंत्र में अधिकारों के साथ जिम्मेदारियां भी होती हैं। ग्राम सभा में भाग लेना, सही जानकारी प्राप्त करना, योजनाओं को समझना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, स्वच्छता बनाए रखना और विकास कार्यों में सहयोग करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। यदि हम हर समस्या के लिए केवल सरकार की ओर देखें और स्वयं कोई जिम्मेदारी न लें तो लोकतंत्र की भावना अधूरी रह जाएगी।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि आज तकनीक ने जानकारी तक पहुंच आसान कर दी है, यह हम सभी जानते हैं। डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके ग्राम सभा की सूचनाएं अधिक लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। योजना और विकास कार्यों से संबंधित जानकारी को सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाने से नागरिक अधिक जागरूक हो सकते हैं। युवा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकते हैं। वे डिजिटल तकनीक के माध्यम से गांव के लोगों को सरकारी योजना और नागरिक अधिकारों से जुड़ी सामान्य जानकारी समझाने में भी सहयोग कर सकते हैं।
0: जी हाँ।
1: तो हम कह सकते हैं कि ग्राम सभा को मजबूत बनाने के लिए हमें क्या करना है। जैसे कि श्रोता साथियों, ग्राम सभा को अगर मजबूत बनाना है तो ग्राम सभा की बैठकों की जानकारी समय पर सभी ग्रामीणों तक पहुंचाई जानी चाहिए।
0: जी हाँ।
1: महिलाओं और युवाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए। स्थानीय समस्याओं पर प्राथमिकता के आधार पर हमें चर्चा करनी चाहिए। योजना और विकास कार्यों की जानकारी सरल भाषा में साझा करनी चाहिए। साथ ही ग्रामीणों को प्रश्न पूछने और सुझाव देने का अवसर भी मिलना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की समस्याओं को विशेष महत्व भी दिया जाना चाहिए। लिए गए निर्णयों की प्रगति पर आगे की बैठकों में चर्चा होनी चाहिए। साथ ही ग्राम सभा को केवल औपचारिकता नहीं बल्कि संवाद और समाधान का मंच बनाया जाए।
0: बिल्कुल,
1: इससे हम कह सकते हैं अंजलि कि ग्राम सभा मजबूत बन सकती है।
0: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि ग्राम सभा लोकतंत्र की वह मजबूत कड़ी है जो शासन और जनता के बीच सीधा संबंध स्थापित करती है।
1: बिल्कुल,
0: यह गांव के नागरिक को यह एहसास कराती है कि वह केवल किसी योजना का लाभ लेने वाला व्यक्ति नहीं बल्कि अपने गांव के विकास का सक्रिय भागीदार है। लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति तभी सामने आएगी जब गांव का नागरिक जागरूक होगा, सवाल पूछेगा, अपनी बात रखेगा और अपने कर्तव्य को समझेगा। ग्राम सभा इसी जागरूकता और सहभागिता का मंच है। आज आवश्यकता इस बात की है श्रोता साथियों कि हम ग्राम सभा को केवल एक सरकारी बैठक के रूप में न देखें बल्कि इसे जन भागीदारी, पारदर्शिता, जवाबदेही और ग्राम विकास के उत्सव के रूप में देखें।
1: जी हाँ।
0: जब गांव का हर नागरिक कहेगा कि मेरे गांव का विकास केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, मेरी भी जिम्मेदारी है, तब लोकतंत्र की जड़ें और गहरी होंगी। इसलिए कहा जा सकता है कि ग्राम सभा में उठी आवाज केवल एक गांव की आवाज नहीं होती, यह मजबूत लोकतंत्र और सच्चे स्वराज की आवाज होती है। ग्राम सभा में बड़े भागीदारी, तभी मजबूत होगी लोकतंत्र की क्यारी। जागे गांव, बढ़े सहभागिता, यही है लोकतंत्र की सच्ची शक्ति।
1: जी हाँ। तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की, अब देख पा रहे हैं कि समय चला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: जी हाँ।
1: विदा जरूर लेंगे पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: साथ ही इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पाराशर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम घूमर हमारा वारी अमर हित बुन ने आपनी बुन मनीषा
1: ने आपनी बुन अंजलि नु
0: राम राम। भव्य भाई बोनो आप सब हमले रिया हो अपड़ो सामुदायिक रेडियो वागत रेडियो 90.8 FM ने आप सभी नु स्वागत कर रहा हमारे आज ने कार्यक्रम घूमर में
1: होवे बोनो लेने हाजिर थे गए हो कार्यक्रम घूमर ने लेने एक नया विषय ने हाथ थे। तो भाई बोनो आज हमारे कार्यक्रम में अब तक की बातचीत नो विषय है की अपने बोनो नी पंचायत में भागीदारी तकी अपने गाँव नो विकास हरते थी सके ने अपने बोने हरते पंचायत में भागीदारी निभावे। तो आना विषय माते कार्यक्रम घूमर में अपने घना कनी बातें थेगा केम की भाई बोनो कार्य विचार करो के पंचायत भवन में बैठके तसाले से गांव ना विकास माते चर्चा भी थाए हैं। सड़क के बनेगा पानी नी व्यवस्था अपने हरते हुदारो स्कूल में जो सोर भणे हैं एणनी जे उपस्थिति है ई हरते वदाव आंगनबाड़ी में सुविधाएं केवी होवी जुए गांव नी जे स्वच्छता है एने बनावी ने हरते असल अपने राखी शको ने एने साथे बोनोने सोरने स्वास्थ्य नी समस्या ना समाधान अपने हरते करी शको। आ सब सवाल नन वेस में अगर गांव नी बूनों नी आवाज भी शामिल होगा मनीषा बून तो अपने गांव नी विकास नी तस्वीर अजी अलग तरीका तक की अपने दिखे शकंगा
0: होवे
1: क्योंकि अपनी जो बूने ही ये अड़ी सब चीजें ने घनी नजदीकी तक ही देखे हैं इतने कई शक्का के पाए तक ही देखे हैं पानी भरवा जाए हैं सोरन ने भरता तक देखे हैं परिवार ने स्वास्थ्य नी चिंता भी रखे हैं खेती पशुपालन में योगदान आले हैं ने घरना रोजमर्राना घना काना एवं कार्य है जरूरी हेती चीजे हम आ रहे हैं। तो अगर पंचायत ने महिलाओं की भागीदारी ने प्रतिनिधित्व नो अगर महत्व इन्हनु रहेगा इनमें तो आप देखूंगा कि गांव जो है ये असल तरीका तक ही विकास ने आड़ी वधी सकेगा।
0: होवे अंजलि बोन तो आना विषय माते अपने भाई बोन कति कार्यक्रम ने माध्यम कति घना आक्का नी वाते रहेगा पण कार्यक्रम ने शुरुआत में हमला गीत ने मोरे कर अपनी वाती
1: होवे। तो भाई बोनो आप हमबर तरह सु अपनो रेडियो अपनी वाते वाग रेडियो 90.8 FM माते

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बुंदे रुकी जाएंगा तो हूँ थाए
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदिया है ई हुकी जाएंगा खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनो ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: थारी में पासो लावो जूनू हवाद सेहत बनेगा एकदम शानदार बाजरा ज्वार रागी ने मक्का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू बारती नु खवानो सोड़ो देशी अनाज तकी नातू जोड़ो
4: मोटू अनाज अपनावंगा शरीर ने स्वस्थ राकंगा
3: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

साथियों, और कितना चाहिए हमें खुश होने के लिए? कितना पाने के बाद हम कहेंगे कि अब बस इतना ही काफी है? कितनी दूर चलने के बाद हम एक पल रुककर अपने सफर को देखेंगे और कब समझेंगे कि जिंदगी सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि जो मिला है उसे महसूस करने का नाम भी है। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि कार्यक्रम सपनों की उड़ान में हम जीवन के उन सवालों पर बात करते हैं जो कभी कभी हमारे मन में चुपचाप बैठते हैं, लेकिन हम उनके जवाब तलाशने के लिए रुकते नहीं हैं। आज कार्यक्रम का हमारी बातचीत का विषय है कि जीवन में पर्याप्त कहना हम कब सीखेंगे। आते इस विषय पर हमारी श्रोता साथियों आपसे ढेर सारी बनी रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआती दस्तूर को निभाते हुए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर के।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको विषय से रूबरू कराया था कि आज हमारी बातचीत रहने वाली है कि जीवन में पर्याप्त कहना हम कब सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह सवाल केवल पैसों से जुड़ा हुआ नहीं है, यह हमारी इच्छाओं से जुड़ा है, हमारी अपेक्षाओं से जुड़ा है, हमारी तुलना से जुड़ा है और सबसे बढ़कर हमारे मन की उस आदत से जुड़ा है जो बार बार कहती है थोड़ा और। जी हाँ, थोड़ा और के दौर के बारे में बात करें तो बचपन में हम खिलौने से खेलना चाहते थे, खिलौना मिल जाता तो दूसरा चाहिए होता था, फिर स्कूल में अच्छे अंक आते तो उससे बेहतर अंक की इच्छा होती, नौकरी मिलती है तो अच्छी नौकरी चाहिए, घर बनता है तो बड़ा घर चाहिए, मोबाइल आता है तो नया मॉडल चाहिए, एक उपलब्धि मिलती है तो दूसरी उपलब्धि की चिंता शुरू हो जाती है। श्रोता साथियों, सपने देखना गलत नहीं है, आगे बढ़ने की इच्छा रखना भी गलत नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम आगे बढ़ रहे हैं या कभी खत्म न होने वाली दौड़ में भाग रहे हैं। क्योंकि बहुत से बार ये होता है कि इन सारी चीजों की वजह से हम हमारे जिंदगी के असली सुकून को कहीं खो देते हैं। इसलिए कई लोग सोच सकते हैं कि अगर हमने पर्याप्त कहना सीख लिया तो हमारी महत्वाकांक्षाएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर्याप्त का अर्थ यह नहीं है कि आप मेहनत करना बंद कर दें, इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अपने सपनों को छोटा कर दें, इसका अर्थ है अपनी जरूरत और लालच में अंतर समझना, मेहनत और अंधी दौड़ में अंतर समझना, सुविधा और दिखावे में अंतर समझना और सबसे महत्वपूर्ण यह समझना कि कब किसी चीज के पीछे भागना जरूरी है और कब रुक कर अपने वर्तमान को जीना जरूरी है। जी हाँ, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि सपने बड़े रखिए, लेकिन अपनी खुशी को उन सपनों को पूरा होने तक बंधक मत बना कर रखिए। जी हाँ, आज हमारी जिंदगी में तुलना बढ़ गई है, हम अपने पड़ोसी को देखते हैं, रिश्तेदारों को देखते हैं, दोस्ती को देखते हैं, सोशल मीडिया पर किसी दूसरे की जिंदगी को देखते हैं और फिर अपने जीवन को कम समझने लगते हैं। किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास महंगी गाड़ी है, किसी की नौकरी अच्छी है, किसी का बच्चा किसी परीक्षा में आगे है, किसी का व्यवसाय अच्छा चल रहा है, लेकिन हमें केवल सामने वाले की दिखाई देने वाली जिंदगी दिखाई देती है, उसके संघर्ष, उसकी परेशानियां, उसकी रातों की चिंता नहीं। इसलिए तुलना अक्सर अधूरी जानकारी पर आधारित होती है। सोचने वाली बात है श्रोता साथियों कि दूसरों की जिंदगी की तस्वीर देखकर अपनी जिंदगी का फैसला मत कीजिए, क्योंकि तस्वीर में हमेशा पूरी कहानी दिखाई नहीं देती है। हम सोचते हैं ज्यादा चीजें मतलब ज्यादा खुशी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एक समय था जब साधारण जीवन में भी परिवार साथ बैठता था, लोग एक दूसरे के घर बिना बुलाए चले जाते थे, चौपाल पर बातचीत होती थी, बच्चे बाहर खेलते थे, त्योहार में पूरा मोहल्ला गांव में शामिल होता था। आज हमारे पास सुविधाएं अधिक हैं, लेकिन क्या हमारे पास एक दूसरे के लिए समय भी उतना ही है? यह सवाल सोचने योग्य है, क्योंकि कई माता पिता अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं या प्रेम है, लेकिन कभी कभी बच्चों की हर इच्छा पूरी करने की कोशिश में हम उन्हें यह सिखाना भूल जाते हैं कि जो मिला है उसकी कद्र कैसे करें। बच्चों को हर बार नई चीज देने के बजाय कभी यह भी सिखाएं कि पुरानी चीजों को कैसे संभालना है, अपनी चीज किसी से कैसे बांटनी है, जरूरत और इच्छा में फर्क कैसे समझना है और मेहनत से मिली छोटी चीज का भी सम्मान करना है, क्योंकि संतोष खरीदा नहीं जा सकता, सिखाया और जिया जाता है। तो साथियों, जैसा कि आज कार्यक्रम में बहुत ही अच्छे विषय पर हमारी बातचीत चल रही है, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यहीं बात करते हैं समय के मामले में भी पर्याप्त शब्द महत्वपूर्ण है। यानी कि हम पैसे बचाने की बात करते हैं, समय बचाने की बात करते हैं, लेकिन हम अक्सर समय को सबसे आसानी से खर्च कर देते हैं। सुबह काम की जल्दी, दिन भर जिम्मेदारियां, शाम को थकान, रात को मोबाइल, फिर अचानक महसूस होता है कि बच्चे बड़े हो गए, माता पिता बूढ़े हो गए, दोस्त दूर हो गए और हम सोचते रह गए कि समय कब निकल गया। इसलिए जीवन में यह भी सीखना जरूरी है कि कब कहना है कि आज काम बहुत है, लेकिन परिवार के लिए यह समय पर्याप्त रूप से जरूरी है। जी हाँ, कई लोग कहते हैं कि जब पैसा जमा हो जाएगा तब घूमेंगे, जब घर बन जाएगा तब आराम करेंगे, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब अपने लिए समय निकालेंगे, जब नौकरी में तरक्की होगी तब खुश रहेंगे। लेकिन जिंदगी हमेशा अगली तारीख का श्रोता साथियों इंतजार नहीं करती, इसलिए आज में ही खुश रहने के छोटे छोटे अवसर खोजिए। परिवार के साथ चाय, बच्चों के साथ कुछ मिनट खेलना, माता पिता से बातचीत करना, दोस्तों से खुलकर हंसना, खेत में बैठकर शाम देखना, और ये छोटी सी चीजें, लेकिन जीवन इन्हीं पलों में बनता है। खुशी को कल के खाते में जमा मत करते रहिए, कुछ खुशी आज भी खर्च कीजिए। जी हाँ दोस्तों, संतोष का मतलब यह नहीं है कि इंसान विकास करना बंद कर दे। किसान अच्छी फसल चाहता है, विद्यार्थी अच्छे अंक चाहता है, व्यवसायी तरक्की चाहता है, युवा अच्छी नौकरी चाहता है, ये सब स्वाभाविक इच्छाएं हैं। संतोष का अर्थ है मेहनत करते हुए भी मन में यह स्वीकार करना कि मेरी कीमत केवल मेरी उपलब्धियों से तय नहीं होती। यदि आज परिणाम अपेक्षा के अनुसार नहीं आया तब भी मैं खुद को असफल इंसान नहीं मानूंगा, मैं कोशिश जारी रखूंगा और यही संतोष है। जी हाँ दोस्तों, प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती। बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, सुबह धीरे धीरे आती है, बारिश अपनी गति से होती है, ऋतुएं अपना समय लेकर बदलती है। प्रकृति हमें बताती है कि हर चीज को तुरंत पाना जरूरी नहीं, हम भी अपने जीवन में धीरे सीख सकते हैं। इसी के साथ अब बात आती है कि क्या कम में खुश रहना संभव है। तो दोस्तों बिल्कुल, कम साधन कम खुशी एक ही बात नहीं है। किसी परिवार के पास बहुत पैसा हो सकता है लेकिन बातचीत न हो, दूसरे परिवार के पास सीमित साधन हो लेकिन शाम को सब साथ बैठकर हंसते हो, तो असली समृद्धि कहाँ है? शायद वहाँ जहाँ मन में एकाग्रता और रिश्तों में अपनापन हो। श्रोता साथियों, आज रात सोने से पहले कागज पर आप 3 बातें अवश्य लिखिएगा। पहली ये कि मेरे पास क्या है, दूसरी कि मैं किस चीज के लिए आभारी हूँ, तीसरी मेरी कौन सी इच्छा वास्तव में जरूरत है और कौन सी केवल तुलना के कारण पैदा हुई है। हो सकता है कि इन 3 सवालों के जवाब आपको अपने जीवन को नए नजरिए से देखने में मदद कर रहे हैं। कहना चाहूंगी दोस्तों एक कविता के माध्यम से कि दौड़ते दौड़ते अगर आप थक जाएं तो कुछ पल ठहर जाना, जो मिला है जीवन में तुमको उसको भी पहचानना। हर मंजिल के आगे मंजिल हो तो सफर खत्म होगा, कभी तो अपने मन से पूछो कि क्या इतना कम होगा। सपने देखो, आगे बढ़ो, मेहनत से मत घबराना, लेकिन जो आज मिला है तुमको उसमें भी सुख ढूंढ पाना। और चाहिए कि शोर में अक्सर मन की आवाज दब जाती है, इतना भी बहुत है कर देने पर कि जिंदगी मुस्कुरा जाती है।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही आपको कहना चाहूंगी कि ये केवल व्यक्तिगत जीवन की बात नहीं है कि हम पर्याप्त कहना सीखें। हमारा समाज भी लगातार अधिक की ओर बढ़ रहा है। अधिक उपभोग, अधिक दिखावा, अधिक प्रतिस्पर्धा, अधिक संसाधनों का इस्तेमाल, लेकिन प्रकृति के संसाधन सीमित हैं। यदि हम केवल लेते रहेंगे और लौटाएंगे नहीं, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या बचेगा? इसलिए पर्याप्त कहना पर्यावरण के लिए भी महत्वपूर्ण है। जितनी जरूरत हो उतना इस्तेमाल करना, भोजन बर्बाद न करना, पानी बचाना, बिजली का ध्यान रखना, अनावश्यक वस्तुएं खरीदने से पहले सोचना, ये छोटे कदम हैं, लेकिन भविष्य के लिए बड़ी जिम्मेदारियां हैं। कभी कभी हम केवल दूसरों को खुश करने के लिए अपनी सीमा से अधिक काम करते रहते हैं। हर किसी की मदद करना चाहते हैं, हर जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं, हर अनुरोध स्वीकार कर लेते हैं और अंत में खुद ही थक जाते हैं। ऐसे समय में अभी मैं इतना ही कर सकता हूँ कहना भी जरूरी है। हर चीज अकेले करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अपनी क्षमता पहचानना और अपनी सीमाओं का सम्मान करना भी आत्मसम्मान है। श्रोता साथियों, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। ऐसी कौन सी चीज है आपके जीवन में जिसके लिए आप लंबे समय से भाग रहे हो, लेकिन शायद आपके पास पहले से ही पर्याप्त है? शायद पैसा, शायद सामान, शायद लोगों की स्वीकृति, शायद दूसरों से आगे निकलने की इच्छा, या शायद हर किसी को खुश करने की कोशिश। आज उस एक चीज को पहचानिए और खुद से कहिए कि मैं अपनी मेहनत जारी रखूंगा, लेकिन अपनी शांति की कीमत पर नहीं। जी हाँ दोस्तों, जीवन हमें हर दिन कुछ न कुछ देता है, लेकिन हमारी नजर अक्सर उस चीज पर रहती है जो अभी हमारे पास नहीं है। इसी कारण कई बार हमारे हाथ भरे होते हैं, फिर भी मन खाली महसूस करता है। हमें अपनी इच्छाओं को खत्म नहीं करना है, हमें बस उनके बीच अपनी शांति के लिए जगह बनानी है। आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन हर कदम पर यह देखना भी जरूरी है कि हम क्या पीछे छोड़ते जा रहे हैं। यदि अधिक पैसा कमाने के लिए परिवार का समय खो गया, तो क्या वह लाभ पूरा है? यदि बड़ी उपलब्धि पाने के लिए स्वास्थ्य खो गया, तो क्या वह सफलता पूरी है? यदि दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपना सुकून खो दिया, तो क्या वह जिंदगी सच में हमारी रही है? शायद इसलिए पर्याप्त शब्द हमारे जीवन में एक सीमा नहीं, बल्कि एक समझ बनकर आना चाहिए। जी हाँ, जीवन में इतना जरूरी चाहिए कि जरूरतें पूरी हो जाएं, लेकिन इतना नहीं कि इच्छाएं कभी खत्म नहीं हो। इतना जरूरी कमाएं कि घर चले, लेकिन इतना नहीं कि घर वालों के लिए समय ही ना बचे। इतना जरूर आगे बढ़िए कि अपने सपनों पर गर्व हो, लेकिन इतना नहीं कि रास्ते में खुद को ही पीछे छोड़ दें। और कभी किसी शांत शाम अपने जीवन को देखकर अगर दिल से आवाज आए कि मेरे पास सब कुछ नहीं, लेकिन मेरे पास बहुत कुछ है, तो ये पल को पहचानिए। शायद यही वह क्षण है जब इंसान पहली बार समझता है कि खुश रहने के लिए जिंदगी में सब कुछ होना जरूरी नहीं, जो है उसे पूरे मन से जीना है। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ अब कार्यक्रम सपनों की उड़ान से मैं विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि आज कार्यक्रम में होने वाली बातचीत आपको अवश्य पसंद आई होगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वाग रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagthara.org। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेषर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

सेहत नु राज हूं है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी तकी करो। थोड़ू सी व्यायाम ने दात काढ़ी ने जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए, पांव धोए हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था, हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का खून।

तो श्रोता साथियों, यह तो थी हमारी आज की सभा। आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को कैसे लगी, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता ही वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज की सभा से जाने की। आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल को इसी अनुमति के साथ नमस्कार।